FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948, श्रावण माह, सोलहवीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026, 5:58 हो चुके हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

0: आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 6 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय

0: के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, अपने दिल की बात या सफलता के राज कभी किसी को न बताएं, ये आपको कमजोर कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:30 हुए हैं। झरोखा में जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस।

6:45 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम भोले बिस्तरे गीत। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, फिल्मों से लिए गए युगल गाने इस प्रोग्राम में। समाचार प्रभात हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे सुबह 8 बजे। वंदे मातरम एक जय घोष, ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 8:15 पर, और यही प्रोग्राम दोबारा आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे। पर सुबह आप सुनेंगे प्रोग्राम चित्रलोक। 9:30 पर आज के अखबार कार्यक्रम, आज का अखबार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अखबारों से ली गई जानकारी, साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स हम आपके लिए प्ले करेंगे। 10 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे 10:05 पर। हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज चूंकि नेशनल हैंडलूम डे है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, इस मौके पर हमारा टॉपिक रहेगा बातचीत का, हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक धरोहर घर घर पहुंचाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। स्पॉन्सर प्रोग्राम हमारी बेड़ियां आप सुनेंगे दिन में 11 बजे, और 11:15 पर लाइव फरमाइशी कार्यक्रम आपके लिए पेश करेंगे म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।

दोपहर 12 बजे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। दोपहर 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे आप सुनेंगे शाम 5:20 पर और शाम 5:30 बजे स्पॉन्सर प्रोग्राम उमंग।

शाम 6:30 पर अमृत वाणी कार्यक्रम में आप श्रवण करेंगे शपथ। शाम 7:45 पर मुख्य प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं और उसके बाद कुछ पंजाबी गाने। रात 10:30 पर मुख्य प्रादेशिक समाचारों के बाद सुरसांझ कार्यक्रम में आपके लिए पंजाबी गीत पेश किए जाएंगे।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार हम रिले करेंगे शाम 5 बजे, शाम 6 बजे, दोपहर 2:15 पर, रात 8:45 पर समाचार संध्या, और रात 11 बजे

झरोखा में ये थी जानकारी हमारे आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 6:35 हुए हैं।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं पूछती हूँ शुभा जी से, आज वो किस राग के बारे में बात करेंगी?
1: राग का नाम तो देश है और बहुत ही सबको परिचय भी होगा इस राग से। इसका ऐसे यानी मल्हार का जैसा संबंध है वर्षा ऋतु से, वैसे तो नहीं संबंध है क्योंकि देश में आपको हर प्रकार की बंदिशें मिलेंगी, लेकिन वर्षा संबंधित साहित्य भी देश में काफी मिलता है। और मुझे लगा कि ऐसा कुछ साहित्य, ऐसा एक पद प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रकृति का चित्रण तो हो ही, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जो कि जिसमें प्रकृति ही स्वयं वृंद के रूप में वर्षा मंगल मना रही हो।
0: प्रकृति स्वयं वृंद के रूप में, मतलब ये जैसे वृंद गान का ही ये हो गया
1: जी, तो मतलब जी। एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो प्रकृति जो है तैयार कर चुकी है वर्षा की बधाई देने के लिए
0: जी।
1: तो ये मुबारक नाम के कवि की रचना है और बिलग्राम जो जगह है उसके ये कवि हैं, वहाँ बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार रहे। और मुबारक लिखते हैं कि बाजत नगारे घन, घन के नगाड़े बज रहे हैं, ताल देत नदी नारे, जो पानी लपलप करता है नदी नालों में वो भी ताल दे रहा है साथ में, झींगुरन झांझ, झींगुर जो है वो झांझ बजा रहे हैं, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, और भृंग जो है वो भेरी बजा रहा है। तो अब देख ली पूजा, पूरा एक ऑर्केस्ट्रा तैयार है। बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, कोकिल अलापचारी
0: जी, तो कोकिल का काम है ही
1: आलाप करना, नील ग्रीव यानी नीलकंठ
0: पक्षी है
1: जी, नील ग्रीव नृत्यकारी, वो गर्दन चला के नृत्य करता है, कोकिल अलापचारी नीलग्रीव नृत्यकारी, पौन अर्थात पवन, पौन बीनधारी, वो बीन बजा रही है, चाटी चातक लगाई है, उसके साथ जो चाटी बज रही है वो चातक की है।
0: कितना सुंदर। हाँ,
1: कई अंतरे हैं इस पद में, लेकिन मैंने एक तीन अंतरे चुने हैं गाने के लिए। मणिमाल जुगनू, वर्षा में यदि आप पहाड़ों में देखें तो जुगनू आपको दिखेंगे बारिश के समय में
0: जी।
1: मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, अंधकार जो है उसमें जुगनू चमक रहे हैं ऐसे जैसे कि मणि की माला हो। मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, चौमुख चिराग चारू चपला जराई है।
0: ये जो अनुप्रास है च च च का
1: जी, बिल्कुल
0: जी, इसमें तो, श्लेष भी है
1: जी
0: और अनुप्रास भी है, यमक भी है
1: जी। और कितना देखिए, चिराग जो है वो वैसे हिंदी भाषा का शब्द नहीं लगता, लेकिन चौमुख चिराग चारू चपला जराई है, कितना बढ़िया एक जो सांझी हमारी विरासत है उसका एक छोटा सा उदाहरण है
0: जी।
1: बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, तो विरहनी के लिए हमेशा वर्षा ऋतु में बालम का साथ ना होना वो हमेशा दुख की,
0: और एक नया दुख है ये।
1: हाँ, और तो है ही है कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, सब लोग खुशी मना रहे हैं और हमारे हम क्या खुशी मनाएं। बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, पावस हमारे लिए विरह बढ़ाई है, उसने तो हमारे लिए बहुत ही विरह को और भी आग लगा दी है,
0: काम कर दिया है। हालांकि ये वाद्य वृंद जो है वो अपनी चरम सीमा पे चढ़ जाता है, और ऐसा ऐसा एक ध्वनि का एक समुदाय जो है वो बहुत खुशियां देता है, लेकिन विरहिणी के लिए वो कोई खुशी की बात नहीं, अलग से एक नया दुख उसने पाया है।

0: तो शुभा जी, आपके स्वरों में भी हम इस दुख को, इस सुंदरता को महसूस करेंगे।
1: जी, देश राग में और तीन ताल में।
0: जी अच्छा, आप क्या देश राग का चलन पहले सुनाएंगी?
1: जी जरूर। वैसे इसे मिश्रित करके भी बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन मूल रूप

0: तो राग देश में हमने सुनी मुबारक की रचना, बहुत ही बढ़िया सी बंदिश। बंदिश के तहत मैं दोनों रूप में सोचती हूँ कि शब्द रचना भी और संगीत रचना भी। और इसे स्वर देने वाली हमारी अतिथि कलाकार शुभा जी अभी इजाजत चाहते हैं। शुभा जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसे क्लिक में, अरे वाह।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा को। इन गीतों के माध्यम से उनकी पावन स्मृति को नमन।

गुलशन बाबरा का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना। कल्याण जी, आनंद जी संगीतकार थे और फिल्म का नाम था चंद्रसेना। लीजिए अब सुनिए सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाजों में गुलशन बाबरा का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार दत्ताराम, फिल्म का नाम डार्क स्ट्रीट।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: जान तो बेटा। सट्टा बाजार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे रवि।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलशन बाबरा का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की, मोहम्मद रफी की आवाज में। संगीतकार थे रवि। फिल्म का नाम गर्ल्स हॉस्टल।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे पी एल संतोषी, संगीतकार थे कल्याण जी वीरजी शाह। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

0: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब

0: करना और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। आप सभी को सविता सिंह का

विश्वास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी मुकेश और आशा भोसले की, गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आज हमें रहे प्यार के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, सुंदर भाव और विलक्षण रचनाओं का स्मरण कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा के। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: लफू चक्कर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा

0: भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए। तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
4: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
3: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
5: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
3: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: कि हम तुम चोरी से बन

खेल खेल में फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे कल्याण जी, आनंद जी।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: हम हेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का बहुत

निशान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार थे गुलशन बाबरा। गुलशन बाबरा का लिखा एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं अदालत फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: आशाओं के साथ थिरकते कदम
1: चलते रे इश्क में बढ़ जाते
0: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
0: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: वो कॉमिक क्रिएटर है,
7: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
6: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
7: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
6: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
7: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
6: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म अनजाने में का ये गीत अभी आपने किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलशन बाबरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम समाप्त करने के दीजिए इजाजत। सविता सिंह को नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को ही कुछ ही पलों में हम आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
1: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Ports, industry, maritime expert together on one platform.
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल

0: इलेक्शन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे

0: सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
3: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदलगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित

0: जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर।
4: मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हो

0: वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्धमोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कभी रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल ढींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। इन शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल ढींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमा गातामारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा।

0: जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाहु अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बर्कले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष।

0: सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
6: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
5: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
7: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
5: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: कि हम तुम चोरी से

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
1: हिमाचल के खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HP TDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HP TDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुने।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ, परंपरा टंडन और सचेत टंडन की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था, सचेत टंडन ने धुन बनाई थी।
1: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेरी ब्रदर की दुल्हनिया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नेहा वसीन और साथियों की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे और सुहेल सेन का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: पटना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। सभी प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: हक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। अली ब्रदर्स ने इस गीत को गाया था।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता के आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी दिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 7 अगस्त सन 1905 को कोलकाता यानी तत्कालीन कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद हुआ। इसके तहत भारत में बने विशेषकर हथकरघा उत्पादों को अपनाने का प्रण लिया गया। इस आंदोलन ने भारत के स्थानीय बुनकरों और कुटीर उद्योगों को नई जान प्रदान की थी, इसलिए उनके सम्मान में इस ऐतिहासिक तारीख को चुना गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें अपने कुशल बुनकरों के श्रम, उनकी मेहनत और उनकी कला का सम्मान करना सिखाता है, और स्वदेशी आत्मनिर्भरता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की प्रेरणा देता है। कृषि के बाद हथकरघा कृषि

के बाद हथकरघा क्षेत्र भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस उद्योग से जुड़े हुए बुनकरों और श्रमिकों में अधिकांशतः महिलाएं हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण का ये बड़ा माध्यम बना है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी शैलियां हैं। आज का ये दिवस कलाओं को जीवंत रखने में सहायता करता है।

राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में, गुलजार और आलम इकबाल का लिखा हुआ ये गीत था, शंकर एहसान लॉय की ये धुन थी।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये

0: लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंद

0: अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत भी आप सुन रहे थे, लापता लेडीज फिल्म से। प्रशांत पांडे ने इस गीत को लिखा था, राम संपत ने धुन। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजन।

0: खबरों की जानकारी सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: लव जंजुआ और साथियों की आवाजों में ये गीत आप सुन रहे थे। मयूरपुरी का लिखा हुआ, प्रीतम का संगीत था और फिल्म का नाम था सिंग इज किंग।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे इश्क में बढ़ जाते,
1: पूरे दबंग अंदाज में
2: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग, दबंग, दबंग,
1: और दोस्तों की

0: महफिल सजी हो तो
1: ओ केटिको बर्फ बदल है।
0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की

0: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: निकला गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे शांतनु मोहित्रा और फिल्म का नाम परिणीता।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष वारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

ब्रेक के बाद आइए आप सुनते हैं रांझणा फिल्म का ये गाना। ए आर रहमान और साथियों की आवाजें हैं।

ए.आर. रहमान और साथियों की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे रांझणा फिल्म से। इरशाद कामिल के बोल थे, ए.आर. रहमान की तर्ज थी। भारतीय साहित्याकाश में एक ऐसा नक्षत्र, या कहेंगे साहित्य संगीत कला और दर्शन के आकाश में का एक ऐसा नक्षत्र जिसकी आभा युगों युगों तक हमारा पथ आलोकित करती हैं, वे हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार, शिक्षाविद और मानवतावादी गुरु रवींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी लेखनी से केवल शब्द ही नहीं रचे, अपितु संवेदनाओं का एक विराट संसार रच दिया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी अनुपम देन है। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने ऐसी शिक्षा का स्वप्न साकार किया जिसमें ज्ञान के साथ संस्कृति, संस्कार, सृजन और प्रकृति का अद्भुत समन्वय है। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं गीतांजलि, गोरा और चोखेर बाली, काबलीवाला और पोस्टमास्टर आदि।

गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित अमर रचनाएं रविन्द्र संगीत विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिनमें शब्द संगीत और संवेदनाओं का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। आज कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

कहानी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना, एकला चलो रे, जदि तो डाक सुने क्यों ना आसे तब एकला चलो रे। अमिताभ बच्चन और साथियों के आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। इस रचना को रचित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने।

0: अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
5: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
6: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
5: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
6: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
7: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: आज का अखबार।
4: नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का अखबार प्रोग्राम में हम आपके साथ हैं और मैं आपके साथ हूं आपका साथी अनिल पुंज। अब से लेकर 10 बजे तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगे, अखबारों से ली गई जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में कुछ म्यूजिकल नंबर्स प्ले करेंगे। वैसे दोस्तों, कमाल की बात है ना, हमारे देश में भांति भांति के मौसम हैं, हर मौसम का एक अपना रंग है, ढंग है। आजकल बारिशों का मौसम है, मानसून का मौसम है, उसकी बहार है, लेकिन हर मौसम में हर जगह कुदरती नज़ारे कमाल के हैं। अब आज अगर हम आपको लिए चलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में, जी उसकी एक तो वजह है कि आज की अखबार में वैली ऑफ फ्लावर्स की एक बड़ी ही प्यारी अद्भुत तस्वीर

नजर आ रही है, अगर आपकी नजर पड़े तो आप देखेंगे। और ये तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे मानो किसी स्वर्ग में आ गए हों और जन्नत में आ गए हों। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, और सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को विश्व धरोहर में उसकी सूची में ये शामिल है, विश्व प्रसिद्ध वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, क्या बात है। और इस घाटी में तरह तरह के फूल हैं, ऐसे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं कि आप देखकर दांतों तले उंगली दबा लें। अगर आपको कभी मौका नहीं मिला तो मिले तो जरूर जाइएगा। इस साल पर्यटकों की कहते हैं कि पहली पसंद बनी है वैली ऑफ फ्लावर्स। मानसून के बीच फूलों की रंग बिरंगी घाटी देखने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। इस वर्ष 1 जून से 31 जुलाई के बीच 16,462 पर्यटक वैली ऑफ फ्लावर पहुंचे हैं। यह संख्या पिछले साल के पूरे सीजन में आए पर्यटकों से कहीं अधिक है। यानी फूलों की घाटी में 2 महीनों में 74% पर्यटक जो हैं पहुंचे, इससे ज्यादा ही पहुंचे हैं। यहां के जो DFO हैं उनके मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में विदेशी पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। इस वर्ष जून जुलाई के दौरान 86 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं, पिछले वर्ष ये थोड़े ज्यादा थे, लेकिन इस बार जो भारतीय हैं उन्होंने तो धूम मचा दी है इस वैली में। और इस वैली की जो सुंदरता है, हरियाली है, रंग बिरंगे फूलों से ये लदी हुई है, और यहाँ आर्किड फ्लीबैन समेत 600 से ज़्यादा प्रजातियों के फूल यहाँ जो हैं देखने को मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो ब्रह्म फूल होता है, कमल का फूल, वो भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो वैली है अपने आप में कुदरत का एक हसीन और खूबसूरत तोहफा है, तो क्यों ना इस वैली में जब मौका मिले तो जाया जाए और कुदरती नज़ारों में अपने आप को तरोताज़ा किया जाए।

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 states और 4 union territories में। बस 1-3 minute का वीडियो बनाओ और शो केस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वेव्स OTT ऐप पर रजिस्टर करो जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वेव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 lakh rupees और नेशनल लेवल पर 5 lakh rupees। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर और कार्यक्रम चल रहा है आज का अखबार। अपने रेडियो सेट के साथ साथ इस समय आप हमें हमारी ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी सुन रहे हैं।
2: दोस्तों, आज हम महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लेखनी, विचारों और शिक्षा के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को नई दिशा दी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर आइए अब सुने बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलनी चंडीगढ़ के श्री धीमंजन हल्दर के विचार।
3: नमस्कार। आज हर भारतीय तथा समग्र विश्ववासी के लिए आज की दिन एक अति संवेदनशील तिथि है। बांग्ला में इस दिन को 22 श्रावण कहा जाता है। इसी दिन विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर हमें छोड़ के एक शांतिमय अमृत लोक में विलीन हो गए थे। आज हम विश्व कवि, एक महान साहित्यकार, दार्शनिक, शिक्षाविद, संगीतकार और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रेम, प्रकृति और विश्व बंधुत्व का संदेश मिलता है। उनकी लिखित महान कृति गीतांजलि किताब के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय गान जनगण मन की रचना की। उनकी रचना अमर सोनार बांग्ला गीत बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है। आइए हम सब मिलकर विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें एक लाइन उन्हीं की रचना।

0: सत्यसुंदर।
1: गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर अभी आप सुन रहे थे बंगिया सांस्कृतिक सम्मेलनी चंडीगढ़ के श्री धीमंजन हल्दर के विचार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार, और कार्यक्रम में यहाँ हम लेते हैं छोटा सा अंतराल। अंतराल में जानते हैं प्रोग्राम के प्रायोजक क्या कहते हैं।
1: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
2: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
1: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आज का अखबार प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं और अब बारी है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कारोबार जगत से जुड़ी हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। नए IT नियम लागू, अब 36 नहीं केवल 3 घंटे में हटाना होगा AI से बना फर्जी वीडियो और फोटो। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं। 13 साल बाद फैसला आया हाईकोर्ट का, तहलका मैगजीन के संस्थापक तेजपाल को दुष्कर्म केस में 10 साल जेल। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने

जेन जी और जेन अल्फा को दिया, संबोधित और कहा कि विरोध प्रदर्शन संवाद का एक वैध तरीका। मेटा से लगातार दूसरे दिन पूछताछ, भारतीय कानूनों के पालन पर सरकार सख्त। विमान ईंधन में एथेनॉल मिश्रण का दावा गलत, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने ये कहा। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता, विमान ईंधन में एथेनॉल मिश्रण का दावा गलत। सतहत्तर लाख रेड़ी पटरी वालों को मिला बिना गारंटी के कर्ज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव के बीच भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश, आतंकी हैंडलर्स की बातचीत पर सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट। ईरान ओमान में हारमूज खोलने पर सहमति, नहीं लिया जाएगा टोल। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम एशिया के हालात पर की चर्चा। कारोबार जगत से जुड़ी खबरों में ट्राई सख्त, कंपनियों को अब 5G नेट इंटरनेट स्पीड का देना होगा हिसाब। सोना 3,800 रुपए उछलकर 7 हफ्ते के टॉप पर, चांदी 2,100 रुपए महंगी। लोन ना चुकाने पर मोबाइल लैपटॉप बंद नहीं कर सकेंगे बैंक्स। और अब 3 घंटे में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू की ये खास सेवा।

और अब खेलों की दुनिया में चला जाए। फिजियो विवाद के बीच गिल फिर चोटिल, 8 महीने में 10 भारतीय खिलाड़ियों को लगी चोट, नाराज बीसीसीआई ने शुरू की फिटनेस मानक बदलने की तैयारी। अभ्यास मैच में स्पिन टेस्ट, गंभीर बोले हर जवाब तैयार रखो। हॉकी विश्व कप सीरीज, ओलंपिक पदक जीते 7 सितारों के पास दिग्गज बनने का एक मौका, 8 दिन शेष हैं। 13 खिलाड़ी ओलंपिक्स में कम से कम एक पदक जीत का अनुभव रखते हैं भारतीय दल में। 15 अगस्त से शुरू हो रहे विश्व कप में अपनी छाप छोड़ना चाहती है हमारी हॉकी टीम। ये तो थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत से जुड़ी हेडलाइंस, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की। अब बारी गाने की।

वेलकम बैक दोस्तों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम डे है। 7 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में इस पहले दिवस का उद्घाटन किया था। वैसे 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का आज ही के दिन शंखनाद हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक अभियान शुरू किया गया था। और कल प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपील की है युवाओं से, जेन जी से, कि ये जो हमारे बुनकर हैं, ये जो हमारे कारीगर भाई हैं, ये अपने हाथों से छोटी छोटी लूम्स पर कपड़े बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, घंटों लगाते हैं, ना जाने कितने दिन लगाते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप भी कोई, आपके घर में कोई हैंडलूम वैरायटी हो, उसके साथ GRMW वीडियो करके पूरी दुनिया के सामने उस उत्पाद को आप ला सकते हैं और बता सकते हैं कि हम मेक इन इंडिया को कितना प्यार करते हैं, स्वदेशी को कितना प्यार करते हैं। तो आज हैंडलूम डे है और इस मौके पर 10:05 पर जो हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा, वो भी जाहिर सी बात है इसी पर आधारित होगा। और उसका जो टॉपिक है वो रहेगा हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और अब बारी है रीजनल और लोकल हेडलाइंस की, वो खबरें जो बनी सुर्खियां आज के समाचार पत्रों की।

सबसे पहले रीजनल हेडलाइंस में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जुड़ी हेडलाइंस पर एक नज़र दौड़ाते हैं। कुछ एक खबरें आपसे शेयर करते हैं। जालंधर, बठिंडा, फरीदकोट समेत 6 जिलों में मिले तेल भंडारण के संकेत, केंद्र की टीम ने किया दौरा। पंजाब विधानसभा में माइनिंग गैंगस्टर और बेअदबी पर हंगामा, कांग्रेस का वॉकआउट। जल संसाधन एवं खनन भू विज्ञान मंत्री वरेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि भाखड़ा डैम पूरी तरह से सुरक्षित, मामूली झुकाव सामान्य बात। पंजाब में बारिश से लुधियाना में 50 फीट सड़क धंसी, गहरा गड्ढा हुआ। और अब खबर है हरियाणा से। सोनीपत में छात्रों से संवाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा जागते हुए सपने देखें, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार देगी साथ। ऑपरेशन ट्रैक डाउन, हरियाणा में 4 दिन में 1253 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। और सरकारी बसों में आरक्षित सीटों पर महिलाओं को बिठाना अनिवार्य हरियाणा में। अब चलते हैं हिमाचल में। राज्य स्तरीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 11 सितंबर से शुरू हो रही है। ऊना में फ्लेवर युक्त

0: धूम्र रहित तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। हिमाचल में भूस्खलन से 112 सड़कें बंद हैं।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: लोकल हेडलाइंस पर एक नजर। चंडीगढ़ के नियमों में बदलाव किया गया है। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। 100 अंकों की परीक्षा होगी। निर्णायक गलत जवाब पर कटेंगे 0.25 अंक। हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में मिलेगा पेपर। इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। अब केवल लिखित परीक्षा दे बन पाएंगे चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल। चंडीगढ़ और पंचकुला में 1.5 घंटे जमकर बरसे मेघ। मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट। उमस से राहत लेकिन जल भराव और जाम ने किया परेशान। सेक्टर 7 चंडीगढ़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प। ये तो थी लोकल हेडलाइंस। अब आज का कार्यक्रम, आज का अखबार समाप्त करने के अपने साथी अनिल कुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
3: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक, जागो।
2: ये आकाशवाणी का चंडीगढ़ केंद्र है। 10 बजे हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।
7: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है, जिससे राज्य के जनजातीय समुदायों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने का जैसा बताया। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को, बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान अवसंरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल्स कमान के तत्वाधान में

0: किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के लिए 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आवर्जन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस 2 सेंट लुइस रैपिड और बिल्ड्स का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय प्रज्ञानंद ने अंतिम दौर से पहले वाले दौर में उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जवाखोर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेलकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HPTDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
1: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
1: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
1: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें।
3: और साथियों, अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
4: हेलो
5: हेलो,
4: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
5: हेलो चंडीगढ़।

नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में हम आपके साथ हैं। और आज दोस्तों 7 अगस्त का दिन है, आज नेशनल हैंडलूम डे है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। तो इस मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और ख़ास तौर से हमारे बुनकर भाइयों के लिए, हमारे जो शिल्पकार हैं, कारीगर

भाई जो हैं उनको, उनके परिवारजनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आपके हाथों में ये हुनर हमेशा कायम रहे, ये ताकत जो है वो बनी रहे, और अपने हुनर के साथ आप देश का जो नाम है वो रोशन करते रहें, यही हमारी दुआएं हैं दोस्तों। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में इस पहले दिवस का उद्घाटन किया था, और आज 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। दरअसल 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद हुआ था। आज ही के दिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक अभियान शुरू किया गया था। बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों को सम्मानित करने का दिन है दोस्तों। आज राष्ट्रपति भवन में भी विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 22 बुनकरों को उनके योगदान के लिए बहुमूल्य

0: विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक अभियान शुरू किया गया था। बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों को सम्मानित करने का दिन है दोस्तों। आज राष्ट्रपति भवन में भी विशेष प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 22 बुनकरों को उनके योगदान के लिए, बहुमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। आज का दिन जो है हमें याद दिलाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम की और वहाँ से चलते हुए आत्मनिर्भर भारत बनने का जो सफर है उसको सलाम करता है आज का दिन। आज का दिन दोस्तों बुनकरों, कारीगरों को उनके हाथों से जो उत्पाद बने हुए हैं, जो उनकी मेहनत से बने हुए हैं, उनको बढ़ावा देने का दिन है। उनकी आजीविका, उनकी कला को संरक्षित करने का ये दिन है। हमारी परंपरा, हमारी धरोहर, सांस्कृतिक विरासत की पहचान है आज का दिन। उसी को संरक्षित करने का ये दिन मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री ने कल अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर सभी को आग्रह किया है, ख़ास तौर से जेन जी और जो हमारी युवा शक्ति है उसे, कि जिस तरह से ये कारीगर भाई जो हैं, बुनकर भाई जो हैं, अपने हाथों से छोटी छोटी लूम्स पर कपड़े बनाते हैं, हैंडलूम की वैरायटी बनाते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसे बढ़ावा देने के लिए आप भी कोई हैंडलूम वैरायटी की चीज़ खरीदिए, उसे GRMW वीडियो करके पूरी दुनिया के सामने लेकर आइए। तो आज का ये दिन है दोस्तों, बड़े ही महत्व का दिन है। और आज हमारी इस समृद्ध विरासत के बारे में 4 डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसी से जुड़ा हुआ है, और टॉपिक है हमारा कि हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपके क्या विचार हैं, इस प्रोग्राम में आप साझे कर सकते हैं। और इसके लिए, बात करने के लिए हमारे नंबर्स वही हैं, 2660615, 2660617 और 2660619। ये हमारे 3 नंबर्स हैं, इनमें से किसी एक को डायल करना है आपने। और आज नेशनल हैंडलूम डे पर आप हमसे बात कर सकते हैं, और हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई हमारा बुनकर भाई जो है, कोई हमारा कारीगर जो भाई है, शिल्पकार है, वो हमें आज के इस मौके पर अपनी कला के बारे में बता सकता है, किस तरह से उसकी कला जो है वो बनाते हैं अपने हाथों से। इन तमाम बातों के बारे में आज हम बातें कर सकते हैं। तो चलिए, अब बारी है आपकी और आप पहुँचे हैं। बात करते हैं पहले श्रोता से। हेलो चंडीगढ़।
1: नमस्कार जी अनिल जी, मैं रामबीर बोल रहे जी।
0: रामबीर जी, क्या हाल है आपका, फरमाइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, सब परमात्मा की दया जी।
0: और कुरुक्षेत्र में कौन सा गांव आपका बताया आपने?
1: ये गिरमिट गांव है जी।
0: गिरमिट
1: 9 किलोमीटर दूर है
0: जी। जी जी, अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर आप?
1: हाँ जी, जो हथकरघा ये हमारे एक संस्कृति का ही हिस्सा है, क्योंकि शुरू से हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग जो माताएं हमारे दादा दादी के समय में, हम देखते थे कि घरों में चरखा चलाया जाता था और उससे हमारे जरूरत की वस्तुएं जैसे दरी, खेस वगैरह बनवाते थे, और ये जो अपना धागा बनाकर तो कपड़े वगैरह उसके बदले में लेकर आते थे। तो ये तो हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है और इसे कायम रखना हमारे लिए जरूरी भी है।
0: और देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने चरखे से किस तरह से स्वदेशी को एक नई जान दी, एक नई दशा दिशा दी अपने चरखे से।
1: तो बनाए रखने के लिए अपना एक अच्छा काम किया जी उन्होंने।
0: जी जी जी जी, और पूरे देश को उस चरखे के साथ उन्होंने जोड़ा, और वो अपने आप में एक मिसाल है पूरी दुनिया के लिए। तो आपके घर के आसपास भी कोई कारीगर भाई है जो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाता हो, कभी देखा हो?
1: हाँ जी, ये हमारे जो माताएं वगैरह ये दरी वगैरह बनाते हैं जी।
0: जी
1: धागा

0: जी जी
1: वो
0: जी
1: आजकल तो बने बनाए भी आते हैं, तो दरियां वगैरह तो बुनते हैं जी जैसे।
0: लेकिन फिर भी आप देखेंगे शहर के आसपास किसी ना किसी जो गांव होते हैं, उन गांव में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसा घर आपको मिलेगा जो आपके घर में जो बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जो
1: अच्छे
0: इस्तेमाल में
1: तरीके
0: नहीं
1: उन्हें
0: हैं,
1: तो मिल जाएंगे जी, कई
0: हाँ,
1: घरों में ऐसे अच्छे अच्छे तो
0: वो
1: रखते हैं।
0: उनसे रंग बिरंगी चादर बनाते हैं, रंग बिरंगी जो हैं वो ओढ़ने के लिए बनाते हैं, दरियां बनाते हैं जैसा आपने बताया।
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो इन चीज़ों को हमें बढ़ावा देना चाहिए।
1: बिल्कुल जी, जैसे कोई मेला वगैरह है तो वहां पर हथकरघा की जो वस्तुएं हैं हाथ से बुनी हुई, जैसे टोकरी वगैरह है, तो इसमें कलाकार हाथ से जो बनाते हैं तो इसमें सामान बहुत अधिक होता है जी, जैसे बैग वगैरह होते हैं जूट के बैग, या ये अपना टोकरी वगैरह होते हैं सामान के लिए, तो वो कलाकार जो हस्तशिल्प वगैरह में ही आ जाता है जी, तो हथकरघा
0: और
1: भी उसी शामिल है जी।
0: हाँ, हमारे शहरों में खादी ग्रामोद्योग की जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको देश भर के हैंडलूम जो उत्पाद हैं वो मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल मिलेंगे जी,
0: तो ये तो
1: इसमें
0: हमारा
1: बिल्कुल
0: एक जीता जागता हेरिटेज है पूरी दुनिया के लिए, तो
1: जी
0: इसका सम्मान हमें करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो युवाओं को खास तौर से ये अपील की है कि आज के दिन कोई बाज़ार जाके कोई हैंडलूम से बनी हुई कोई प्रोडक्ट को ख़रीदें और उसे अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के ज़रिए देश और दुनिया के सामने लेकर आएं।
1: जी बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति तो हमारी शान है जी, हमारे देश की, तो हमें इसे उभारना चाहिए जी।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर जी।
1: धन्यवाद।
0: हेलो चंडीगढ़। यश कुमार वर्मा जी, आपकी आवाज़ लगता है मुझे ठीक नहीं चल रही है ना? आपको बोलते वक्त जोर तो नहीं लगाना पड़ता? अब मुझे लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है
2: जोर लगाना पड़ता है।
0: लगाना पड़ता है। तो आप फिलहाल रेस्ट कर लीजिए ना। हाँ, कोई ना, फिर जब आप थोड़ा बोलने की ताकत आ जाएगी, थोड़ा अच्छा आपको लगेगा तो बोलिएगा, क्योंकि बोलने से ज़्यादा हमें इस चीज़ की चिंता है कि आपकी सेहत बिल्कुल सही रहे, तो उसके लिए आप थोड़ा आराम कीजिए, है ना? फिर बेहतर। और आज के दिन जो आपका मैसेज है हम तक पहुंच गया है, हम महसूस कर रहे हैं, और आप आज के दिन जो हमारे बुनकर भाई हैं उन्हें सलाम करना चाहते हैं, क्यों, है ना? हाँ, तो आराम कीजिए, अब उसके बाद बात करेंगे, मिलते रहेंगे हम तो, ऐसी क्या बात है। तो दोस्तों, आज का ये जो दिन है वो वाकई ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर हमारे आत्मनिर्भर भारत के सफर का एक सबसे बड़ा साक्षी रहा है और साथ साथ चला है। जैसे कि हमने कहा कि हमारा हैंडलूम, हमारा जो हथकरघा है, ये जीता जागता हेरिटेज है, ये हमारी समृद्ध परंपरा है। हेलो चंडीगढ़ जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए जी, फरमाइए
3: हेलो,
0: जी।
3: मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। पूर्ण साहब नमस्कार।
0: सुरेंद्र कुमार जी, फरमाइए, कहाँ से फरमा रहे हैं आप?
3: और सर मैं चंडीगढ़ से ही बोल रहा हूँ। बड़ी कृपया, आपका विषय बहुत अच्छा है सर।
0: जी
3: हेलो
0: जी जी कहिए कहिए कहिए।
3: जी, तो आज के विषय में हमें सर ये कहना है कि हथकरघे के लिए हम सभी बुनकरों को, सभी शिल्पकारों को अपना सलाम कहते हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हमें बाजार में ला के देते हैं, और हमें वो खरीदनी चाहिए ताकि हमें खुशी भी मिलती है, वो सस्ती भी होती है और हमें मन को भी अच्छी लगती है।
0: जी, बिल्कुल सही है। और
3: हाँ जी
0: देखिए, सबसे बड़ी बात है सुरेंद्र जी, जब हम कोई चीज़ ऐसी खरीदते हैं जो हमारे बुनकर भाइयों की, कारीगर भाइयों की बनाई हुई है,
3: जी सर
0: उससे होता क्या है कि
3: हाँ जी
0: उनके हुनर को एक तो सलाम मिलता है, उनके
3: हाँ जी
0: हुनर को एक ताकत मिलती है,
3: जी जी
0: और सबसे बड़ी बात है कि उनकी अगर आजीविका है और
3: हाँ
0: यही
3: जी
0: आजीविका का उनका साधन है, तो उस
3: जी सर
0: साधन को हम बल देते हैं।
3: हाँ जी।
0: और
3: उनका
0: हमारी जो
3: सर
0: भारतीय
3: मेले में भी
0: परंपरा
3: हम
0: है,
3: जाते हैं, हम छोटे होते थे तो मेले में देखते थे बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियां पेंट की हुई, और लकड़ी के खिलौने, और ये पंखे, हाथ के पंखे बने हुए, और कशीदाकारी बहुत अच्छी लगती थी, और हमें

0: मतलब माता पिता छोटी छोटी चीजें ले ही देते थे, और हमें ये देखना कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए कितना प्रोत्साहन देते हैं कि ये चीजें खरीदेंगे तो हमारी देश में मुद्रा स्फीति भी बढ़ेगी, हमें मतलब आयात करने में भी अच्छा लगेगा और देश में समृद्धि बढ़ेगी सर। और जो कपड़ों के ऊपर जो पुराने कपड़े होते थे वो पानीपत में देते थे सर, तो उसके खेस, उसके बदले में खेस दरी सब मिलते थे, तो आज भी वो मिलते हैं। और ये बड़ी पुरानी विरासत है और हमें इसको संजोए रखना है सर।
1: बिल्कुल सही है, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, पंजाब हरियाणा की बात कर लें, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा, तमिलनाडु, भाई भरा पड़ा है, भंडार है, समृद्ध विरासत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में बात करने के लिए।
0: धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: आइए अब एक ऐसे गांव में चलते हैं इस गीत के जरिए जहां हथकरघा काम हो रहा है।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: वेलकम बैक दोस्तों. आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम डे. और इस मौके पर हमने जो टॉपिक चुना है वो चुना है कि हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं. ये है हमारा आज का टॉपिक. हेलो चंडीगढ़.
2: हेलो चंडीगढ़, नमस्कार.
1: जी नमस्कार, वेलकम. नाम बताइए.
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई से.
1: जी
2: जी जी जी,
1: फरमाइए साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए?
2: आज के दिन के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हाथ से बनी हुई चीजें हमें खरीदनी चाहिए. जैसे कि हमारे हिमाचल में तो आपने सुना होगा, तो हमारे यहाँ जो है हाथ से बनी हुई चीजें काफी हैं, जैसे कि कुल्लू शॉल है, किन्नौरी टोपी है. जब प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो हिमाचली जो है टोपी लगा के जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी हाथ से बनी हुई चीजें हैं. जैसे कि जो भेड़ की जो है बालों की वो बन जाती हैं, जैसे कि जैकेट है, ऐसे ऐसे कई कई तमाम चीजें हैं जो हाथ से बनी हुई थी, जो हमारे इसका जो है प्रधानमंत्री भी यूज करते हैं.
1: बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ की वेशभूषा जो है जिसमें हैंडलूम का काम भी होता है और स्वदेशी भी होता है, वो पहनना कभी नहीं भूलते.
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: और ये हमारी सांस्कृतिक विविधता है और उसे सलाम है ये.
2: जी
1: जी,
2: जो मैं एक कहना चाहता हूँ अनिल जी, जब वो पहली बार जब प्रधानमंत्री शिमला दौरा पे आए थे, तो पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र जी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट में जो है कुल्लू शॉल टोपी भेंट की थी, तो उन टोपी को उन्होंने क्या बोलते लिया था. आज भी वो कहीं भी जो जाते हैं, मैं टीवी में जब सुनता हूँ कि आज जो है प्रधानमंत्री टोपी या कुल्लू शॉल लेके जाते हैं.
1: जी बिल्कुल सही है. और वैसे भी हिमाचली दूर से नजर आ जाते हैं, जब उनके सर पर सजी होती है टोपी हिमाचली, तो दूर से पता चलता है कि हिमाचल के वासी हैं ये. और ये उनकी आन है, बान है और शान है.
2: जी जी जी जी, तो इससे तो हमें युवा को प्रेरित, जब हमारे जो देश के प्रधानमंत्री भी जो हर राज्य की जो है संस्कृति को अपना सकते हैं, तो हमें भी युवा को ये करना चाहिए, हमें अपने हाथों से जो लोग जो हमारे हज करता है, जब उनकी मेहनत से बनाई हुई चीजों को हमें यूज करना चाहिए और उनको जो है हौसला जाहिर करना चाहिए.
1: चूंकि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो राकेश जी हम हिमाचल के युवाओं से भी ये कहेंगे कि वो जहाँ कहीं भी रहें, देश के किसी कोने में रहें, ग्लोबली तौर पर जहाँ भी काम करें, अपनी हिमाचली संस्कृति को हमेशा पुख्ता रखें, अपने साथ रखें, अंग संग रखें. और सबसे बड़ी बात है कि जो हिमाचली टोपी है, जब वो इसी तरह से पहनेंगे, तो ना जाने कितने कारीगरों को जो अपने हाथों से इस टोपी को बनाते हैं, या और भी जो उत्पाद हैं हिमाचली, जब वो बनाते हैं तो इनको एक नया आयाम जो है उनको मिलता है.
2: और सबसे बड़ी बात है, जब हमारे फंक्शन वगैरह थे, जो हिमाचली जो ढोलक को तो अपने हाथों से बनाई जाती हैं, और हमारे जो है कोटखाई क्षेत्र में अभी भी जो कहीं कहीं बनाते हैं.
1: तो आज आप अगर ऐसा कोई कारीगर आपके आसपास है इस वक्त अपने गांव में, तो हमसे बात करने के बाद उसे कहिए कि हमसे बात करे और बताए अपने हुनर के बारे में, अपनी कला के बारे में.
2: अगर है तो लेकिन थोड़ा वो दूर है और हमारे गांव में है, लेकिन वो जब आते हैं तो कभी ये टॉपिक आए तो कराऊंगा, क्योंकि वो ढोलक जो है इस तरह से अपने हाथों से बनाते हैं. और सबसे बड़ी बात है, जब वो ढोलक बनाते हैं, वो अभी जो है एक कुछ भी नहीं, रिटायर हो गए, वो पीडब्ल्यू में काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना जो है

0: अपना ये जो काम नहीं छोड़ा अभी तक भी।
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी नई पीढ़ी है उस तक इस जो सांस्कृतिक विविधता है और हमारी जो सांस्कृतिक ये धरोहर है इसे पहुंचाना हमारा काम है। और इसे पहुंचाने का एकमात्र और सीधा और सरल रास्ता यही है कि हम इनके हाथों से बने जो उत्पाद हैं उन्हें खरीदें, उन्हें बढ़ावा दें।
0: जी,
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।
0: जी जी, धन्यवाद
1: जी। और इसी तरह से आप इस प्रोग्राम में हमसे मिलते रहिए। हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो सर जी, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग
2: सर, मैं सूरज बात कर रहा हूँ, तहसील टेक डिस्ट्रिक्ट शिमला, एचपी से।
1: हाँ, क्या बात है सूरज जी, क्या हाल चाल है, कैसा मौसम है? बारिश हो रही है?
2: बारिश तो सर आज तो नहीं, लेकिन मौसम पूरा बना हुआ कि छूटने वाला जैसा लगता है।
1: हाँ, हिमाचल में सड़कें बंद है भाई, काफी है ना।
2: हाँ जी सर, हाँ
1: जी, जी। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा इस मौसम में। और दूसरी बात, आज के इस प्रोग्राम में जो हमने टॉपिक चुना है,
2: हाँ जी सर,
1: तो आपके गांव में किस तरह का कोई हथकरघा से जुड़ा हुआ है और क्या काम करता है?
2: देखो सर, हमारे यहाँ हथकरघा तो नहीं, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, मैंने उस पर कुछ लाइन लिखी, मैं शाम बोल सकता हूँ?
1: हाँ, क्यों नहीं, बोलिए।
2: मैं कुछ लाइन पंजाबी में लिखी सर, कुछ लाइन आपको उम्मीद है पसंद आएगी
1: जी। अच्छा,
2: तो अर्ज किया है, हथा दी थिरकण नाल धागे गुनगुनाउंदे ने, सुई दी नोक ते सपने मुस्कुराउंदे ने।
1: क्या बात है,
2: खद्दर दे ताने माने ते जद रूह टलदी है, सिद्धे जे ख्वाबा च भी रंगत चलकदी है।
1: वाह भाई वाह, कमाल की थी।
2: तागिया ने अजेही कारीगरी विखाई,
1: जी जी,
2: तागिया ने अजेही कारीगरी विखाई, बाग बगीचे आदि जी में कायनात सजाई।
1: क्या बात
2: है, ना कोई सांचा, ना कोई सांचा, ना कोई मशीन दा जोर, बस उंगलिया दा जादू, बस उंगलिया दा जादू अते हुनर दा शोर, उंगलिया दी जादूगरी ने वो कमाल कर दिता, उंगलिया दी जादूगरी ने वो कमाल कर दिता, आम जहे आंचल नु भी रंगा नाल निहाल कर दिता, वेखते ही वेखते, वेखते ही वेखते ऐदा सतरंगी मंदिर चढ़िया, वेखते ही वेखते ऐदा सतरंगी मंदिर चढ़िया, जिमें किसी कपड़े दे इंद्रधनुष उतर आया।
1: वाह भाई वाह, सूरज जी आपने तो कमाल कर दी।
2: जी सर,
1: कमाल ही कमाल कर दिया आपने तो।
2: जी सर,
1: ये कब बैठ के आपने इसे बुना?
2: जी सर, एक्चुअली सर ये आजकल थोड़ी बहुत मतलब वो हो रही है ना, मतलब निकल रहा है मेरे अंदर का शहर बाहर निकल रहा है।
1: क्या बात है, क्या बात है। और इतना अच्छा निकला कि आपने तो बहुत अच्छा जो है सलाम किया है आज के दिन को।
2: जी सर, वो तो कभी कभी एक्चुअली पता क्या सही, मैंने कहीं किसी दूसरे मतलब जो जलंधर रेडियो स्टेशन पर सुबह 9 बजे प्रोग्राम आता ना, उसके लिए लिखी थी मैंने।
1: अच्छा, तो वहाँ आपने बता दिया?
2: हाँ जी सर बताइए, और मेरी शामिल भी होगी।
1: क्या बात है, और यहाँ भी शामिल हो गई।
2: हाँ जी सर।
1: अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मजा आ गया।
2: हाँ जी।
1: और जो आपने लिखा, जिसे सुई धागे बुनाई है ना, कढ़ाई,
2: जी सर,
1: सब कुछ शामिल कर लिया आपने। और यही चीज रिश्तों में है।
2: जी सर,
1: रिश्तों में भी, रिश्तों को भी हम बुनते हैं।
2: हाँ जी,
1: रिश्तों को भी हम बुनते हैं।
2: बिल्कुल सर, बुनते, बिल्कुल बुनते सर।
1: हाँ, उन गूंथते हैं अपने प्यार से।
2: मतलब हम आजकल जैसे हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो मतलब वो किसने बनाया, ये किस, ये पता है किसी को?
1: बिल्कुल सही है,
2: है ना।
1: और देखिए,
2: मतलब
1: हम
2: तो चलो उसका यूज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उसके पीछे कितने कितना मतलब कितने हाथ लगे हैं उसको। हाँ, मतलब हाँ, उसको मतलब समझ रहे ना आप?
1: बिल्कुल। और ये देखिए, उसमें कितना पसीना बहाया गया है, रात दिन एक किया गया है।
2: हाँ जी सर,
1: आंखें गाड़ कर लगातार घंटों काम किया गया है।
2: बेशक वो सर हैंडमेड नहीं है, जैसे मैंने अभी बोला ना, ये फुलकारी टाइप, मैंने फुलकारी पर ये पोएट्री लिखी थी।
1: हाँ, लेकिन पहले, चलो अब तो मशीनी युग है, मशीन से सब कुछ बनता है, अब कंप्यूटर का जमाना है, AI आ गई, बहुत कुछ होता है उससे, लेकिन हाथ हाथ है।
2: हाथ तो हाथ है, बिल्कुल ठीक बोल रहे सर।
1: ठीक है, और उसका कोई सानी नहीं, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता।
2: हाँ जी सर।
1: तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि हम ब्रांडेड चीजों के पीछे तो भागते हैं।
2: हाँ जी।
1: और उनके लिए हम कभी भाव नहीं करते, कभी नाप तोल नहीं करते हैं।
2: मतलब सर ऐसा ना, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अगर कोई 5,000 का सूट भी है ना, उसको भी हम करते कम करते करते करते करते 2,000 से 3,000 में लेकर आते हैं।
1: जी, और जब हम क्या करते हैं,
2: ओरिजिनल वैल्यू तो उसको कम क्यों कर रहे हैं बेचारे, क्यों, क्या बोलते हैं,
1: वही
2: उसका बिजनेसमैन और जिसने बनाया उसका नुकसान कर रहे हैं।
1: वही कहना चाह रहा हूँ कि हैंडलूम की चीजें जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें बड़ा लगता है कि बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। भाई आप उसके पीछे ये देखो, उसमें मेहनत कितनी, काम कितना है।
2: हाँ जी सर,
1: है ना, उस मेहनत के जितने भी पैसे उतने कम है।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे।

0: और जब आप वो चीज़ खरीदते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं,
1: एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ये
0: स्वदेशी
1: बात
0: को
1: तो है।
0: बढ़ावा देते हैं,
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और जब आप कहते हैं कि मैं देश के लिए क्या करूं, देश के देशभक्ति मेरी क्या है, वो यही है कि हम अपनी समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाएं अपनी
1: अच्छा,
0: दिनचर्या में। तो आज तो मौका है, आज
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर।
0: सूरज जी प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है कि आज आप हैंडलूम से बनी कोई चीज़ खरीदें
1: हाँ जी
0: और उसे उसकी वीडियो शेयर करें, दुनिया तक
1: जी सर,
0: पहुंचाएं।
1: बिल्कुल
0: आपका बहुत
1: बिल्कुल
0: बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सूरज जी।
1: ओके सर, थैंक यू।
2: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: और साथियों, इस प्रोग्राम में हम फिर आपके साथ हैं। आज नेशनल हैंडलूम डे पर हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में हैंडलूम की साड़ियों की तो भाई धूम है, सिर्फ देश में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहाँ बनारसी सिल्क पूरी दुनिया में जानी जाती है, इन साड़ियों पर गोल्डन और सिल्वर धागों से काम किया जाता है, साड़ियों पर जरी और ब्रोकेट का काम किया जाता है। हथकरघा को इन्हें बनाने में कई बार महीनों और साल लग जाते हैं। ये छोटी छोटी लूम्स होती हैं जो हाथों से चलती हैं, पैरों से चलती हैं, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी अपनी मेहनत के साथ जो है काम किया जाता है। गुजरात की अगर बात करें, साड़ियों के लिए गुजरात भी किसी से पीछे नहीं। यहाँ की पटोला साड़ी और इक्कत प्रिंट की सिल्क साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, ये शामिल हैं जिन्हें बुनकर तैयार करते हैं। राजस्थान की साड़ियों की बात करें, कई आपको विकल्प मिल जाएंगे जिसमें लहरियाँ, टाई एंड डाई और बांधनी हैंडलूम साड़ियाँ लोगों को बहुत पसंद। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चंदेरी साड़ियां, कमाल की बात है, चंदेरी सिल्क वाले सूट और दुपट्टे, वाह कमाल है भाई। तो और भी हम आपसे शेयर करेंगे बातें। फिलहाल एक और हमारे श्रोता ऑनलाइन है। हेलो चंडीगढ़,
3: हेलो सर, गुड मॉर्निंग जी। सर
0: वेरी गुड मॉर्निंग, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए। फैजान,
3: मेरा नाम फैजान है। ठीक
0: क्या हाल है
3: है सर, आप सुनो।
0: फैजान भाई, कहाँ से फरमा रहे हैं आप?
3: सर मैं सेक्टर 7 से।
0: अच्छा, हाँ आप अक्सर इस प्रोग्राम में मिलते रहते हैं हमें।
3: हाँ सर, कभी कभार सर मैं
0: अच्छा,
3: कॉल कर लेता हूँ सर। वैसा तो मैं सुनता हूँ हमेशा, लेकिन सर मैं बस बातें सुनता हूँ सर, वही मेरे को अच्छा लगता है।
0: अरे आप किया करो, आपको किसने मना किया?
3: क्योंकि नहीं सर, बस मैं सुनता हूँ सर, मेरे सुनना ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा
3: क्योंकि सर
0: सुनना
3: अभी
0: अच्छा।
3: तक तो सर किसी 4 हजार की सर कॉल नहीं आई। मैं सोचा लाऊ सर, मैं क्यों ना कॉल कर लूँ।
0: बहुत अच्छा। क्या अच्छा, फैजान भाई ये बताओ आप कहाँ बिलोंग करते हैं?
3: सर मैं सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
0: सहारनपुर के बुनकर कारीगर भाई, कमाल के। तो
3: जी। थैंक यू सर।
0: वहाँ का कुछ बताइए हमें, अपने आसपास अपने गांव में जो बुनकर हैं वो किस तरह की क्या चीज़ बनाते हैं,
3: हाँ
0: क्या
3: सर, वहां
0: उकेरते
3: पर ना
0: हैं?
3: सर जो नक्काशी का काम होता है ना सर,
0: हाँ
3: और सर वो फर्नीचर जो होता है सर, वो बहुत मजबूत होता है।
0: हाँ
3: और
0: बिल्कुल
3: सर
0: सही कहा।
3: उसको जी सर, आजकल सर विदेशी फर्नीचर आ रहे तो सर वो इतने ज्यादा नहीं चल रहे। और सर वो फर्नीचर जो है तो सर 200 साल 300 साल ऐसे ऐसे चलते हैं, और उनको बीच में जब उससे मन भर जाए उनको पॉलिस्टर डाल लो, और सर वो जो इतने विदेश से चल पाते हैं तो सर यहाँ का ही फर्नीचर सर खरीदना चाहिए
0: और फैजान भाई देखिए, चंडीगढ़
3: नकाशी
0: में,
3: का।
0: पंचकुला में, मोहाली में, देश
3: यस
0: के हर कोने में ये सहारनपुर के जो कारीगर हैं वो
3: यस
0: जगह जगह
3: सर,
0: जाते हैं
3: यस सर, पूरे
0: और
3: देश में
0: बहुत
3: सर,
0: बहुत
3: सर
0: भीड़ होती
3: विदेशों में
0: है,
3: भी है। यस
0: और
3: सर
0: वहाँ वो जो खरीदने वाले उनको बताते हैं ये किस तरह से बनाया गया है, इसमें कितने दिन लगे हैं।
3: जी। और सर
0: जी
3: एक बात और है सर, देखो हर एक काम के सर कंप्यूटर वगैरह आ जाना, लेकिन सर इसका कोई मशीन नहीं है निकासी की अभी तक के सर, इसको हाथ से ही बनाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, मैंने वही तो कहा, हाथ से बनी हुई चीज का एक अपना ही रंग होता है, एक अपना ही आकर्षण होता है, वो आपको लुभाती है, अपनी ओर
3: यस
0: खींचती
3: सर,
0: है। तो आपके
3: सही बात है।
0: परिवार में भी कोई इस तरह से बुनकर है, कोई कारीगर है?
3: हाँ सर, सभी सर कारीगर हैं।
0: अच्छा
3: एक भाई है सर, वो दादा अपना काम कर लिया। हाँ। और सर एक भाई और है, वो कारपेंटर काम करते हैं ये पर, और मैं नकाशी का काम करता हूँ सर। सर वो अभी भी सर सोफा बना रहे, सर उसमें मैं नकाशी करता हूँ, और भाई है वो सोफा बनाते हैं, पहले ढांचा

0: बनाते हैं, फिर उसके अंदर नवरात्रि रहते हैं।
1: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और फैज़ान भाई, आज इस प्रोग्राम में आपने हमसे बात की और अपने सहारनपुर की बात की, अपने गांव की बात की, तो चलिए फिर एक गांव में चलते हैं।
0: ओके ओके,
1: थैंक यू वेरी मच।

0: दोस्तों, आज नेशनल हैंडलूम डे है और हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं, ये है हमारा आज का टॉपिक। और हमारे नंबर्स एक बार फिर से नोट कर लीजिए, खास तौर से उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी रेडियो सेट ऑन किया है और कॉल करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। हम तो चाहते हैं कि कोई हमारा बुनकर भाई, कोई कारीगर भाई जो हाथों से अपने हुनर से कोई उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उसके बारे में बताए, हमसे साझा करे तो अच्छा लगेगा। और आप में से अगर किसी ने अभी हाल ही में कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा है उसके बारे में बताए, और अगर खरीदा है तो उसे उस वीडियो को शेयर करे, पोस्ट करे, दुनिया को बताए कि हाँ, हमें मान है, हमें गर्व है अपनी समृद्ध परंपरा पर। हेलो चंडीगढ़
1: जी को नमस्कार।
0: जी नमस्कार जी, वेलकम। नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: मैं सतपाल सिंह बिंद्रा बोल रहा हूँ सर, चंडीगढ़ से ही।
0: जी बहुत अच्छी बात है, फरमाइए साहब।
1: सर हम विभिन्न राज्यों के बारे चर्चा कर चुके हैं,
0: चर्चा जारी है
1: कारीगरी के बारे में।
0: हाँ हाँ,
1: सुन चुके हैं लोग जो चर्चाएं कर रहे थे।
0: जी जी सर,
1: तो

0: हमारे बगल में लुधियाना है
1: हाँ हाँ बिल्कुल सही।
0: और होजरी इंडस्ट्री जो यहाँ की है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है,
1: जी बिल्कुल सही है।
0: और जो विदेशी करेंसी हमारे देश में एक्सपोर्ट से आती थी लुधियाना उसमें नंबर वन था होजरी गुड्स में।
1: जी जी
0: और एक बार इसकी पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी
1: जी
0: कि लुधियाने में सबसे ज्यादा मर्सिडीज गाड़ियां हैं जो हमारे अच्छे अच्छे राज्य हैं 1, 2, 3 उनके पास इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां नहीं है
1: जी।
0: तो एक अच्छा आमदनी का स्रोत था और घर घर होजरी की वहाँ काम होते हैं और क्वालिटी आपको पता है विदेशों में जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो क्वालिटी आपको मेंटेन करनी पड़ी
1: जी।
0: तो ये विदेशी मुद्रा के भंडारण में इनका काफी सहयोग रहा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: और कश्मीर की हम बात करें, कश्मीर में जो गलीचे वगैरह बनते हैं इसकी कारीगरी भी काबिले तारीफ है।
1: जी बिल्कुल सही है।
0: तो हमारे आसपास के जो राज हैं और कारीगर हैं, एक घटना मैं आपको बताऊं। पंजाब में अटारी बॉर्डर के पास में एक गांव का मॉडल विकसित किया गया है
1: जी।
0: विदेश से जो लोग घूमने आते हैं वहाँ हरमंदिर साहिब में माथा टेकने आते हैं, उनको गांव का अनुभव करवाया जाए, गांव का खाना, गांव का कल्चर कैसा है। तो वहाँ हथकरघा भी उन्होंने रखा हुआ है, हथकरघे में खेस दरी की बुनाई करते हैं, लाइव दिखाते हैं। तो ये कारीगरी पंजाब में भी काफी है, काफी काम करते हैं लोग।
1: देखिए तो, पंजाब की अपनी फुलकारी है, कढ़ाई है, दुपट्टे से लेकर साड़ियों तक ये कढ़ाई होती है, और हरियाणा में भी हल्के सिल्क की रेशम धुरिया साड़ी मिलती है।
0: तो ये फुलकारी का तो क्या कहना, शादी ब्याह में दुल्हन फुलकारी को लेकर फेरे लेती है तो उसका भी एक अलग ही दृश्य होता है।
1: पूरी दुनिया में धूम है।
0: धूम है पूरी।
1: जी जी जी जी। तो बिल्कुल आपने सही,
0: कारीगरों को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि युग तो बदल रहा है, मशीनें आ गई हैं, हथकरघा कम हो गए हैं, सरकारें बुनकरों को मदद कर रही हैं, उनको आर्थिक सहयोग दे रही हैं, फिर भी जब तक कस्टमर नहीं होंगे तब तक उनका बिजनेस, व्यापार, कारीगरी आगे नहीं बढ़ेगी।
1: बिल्कुल सही है। अगर आप अपने लिए 2-4 चीज़ें लेते हैं तो एक आप ये सुनिश्चित करें कि आप हाथों से बनी हुई, हथकरघा पर बनी हुई चीज़ को भी अपनाएं, घर लेकर आएं। इससे क्या होगा कि एक तो आप किसी की आजीविका को बढ़ाएंगे, देश की समृद्ध परंपरा को बनाएंगे, और आने वाली पीढ़ी जो हमारी यंग जनरेशन है उसे आप ये बताएंगे कि हमारी सांस्कृतिक विविधता क्या है, हमारी धरोहर क्या है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए इस प्रोग्राम में बिंद्रा जी।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।

बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट झटक झटक के।

0: और दोस्तों, आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम बात कर रहे हैं कि हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं। तो पंजाब हरियाणा की हमने बात की, छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क साड़ियां काफ़ी पसंद की जाती हैं। बिहार झारखंड की बात करें तो बिहार की भागलपुरी साड़ियां, इन्हें भागपुरी टसर सिल्क से जो है वो बनाया जाता है। वही झारखंड में इसे आदिवासी टसर सिल्क से तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की कॉटन साड़ियाँ काफ़ी पसंद की जाती हैं। इसमें बालूचरी साड़ियाँ अपना ही रंग ढंग है उनका। यहाँ जामदानी साड़ियाँ भी, उनकी भी अच्छी मांग रहती है। हिमाचल में कला और हैंडलूम के मामले में ये पहाड़ी राज्य सबसे आगे है। हिमाचल की कुल्लू पट्टी साड़ी काफ़ी फेमस है, जिसे मूंगा सिल्क से तैयार किया जाता है। उत्तराखंड की पंचाचूली हैंडलूम साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं, ऐसे ही गोवा की हैं। लाल रंग के चेक वाली गोवा साड़ी भी काफ़ी पसंद की जाती है, इन्हें कुनबी साड़ी कहा जाता है। ये कॉटन साड़ियाँ होती हैं जिन्हें आदिवासियों द्वारा तैयार किया जाता है। और भी हमारे तमाम राज्य हैं, सबकी अपनी अलग अलग पहचान है, अपना अपना रंग है। यही है विविधता, हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता। हेलो चंडीगढ़।
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए, जगह का नाम बताइए।
1: संजय बोल रहे हैं, नाब्बे तुम्हें जी।
0: हाँ जी संजय जी, क्या हाल हैं आपके?
1: बढ़िया जी, बढ़िया है जी। अभी आपने ना सभी राज्यों के नाम बता दिए, एक राज्य छोड़ गए आप।
0: हाँ, मैंने कब छोड़ा? मैंने तो अभी उसको अभी तो मैंने रुका, एक अंतराल लिया आपसे बात करने के लिए।
1: नहीं, जब

0: दूसरे भी राज्यों को बता रहे थे ना, आप वहाँ पे उत्तराखंड है, झारखंड है, यूपी,
1: हाँ,
0: एक राजस्थान भी है इस कला के अंदर।
1: मैं राजस्थान बता चुका हूँ, आपने सुना नहीं?
0: प्रोग्राम तो मैं सभी सुन रहा हूँ। चलो
1: हाँ, तो
0: सॉरी, मैंने नहीं
1: राजस्थान के
0: सुना।
1: बारे में मैंने
0: राजस्थान
1: आपको
0: की कला
1: बताया, उसमें
0: तो
1: लहरियां,
0: लहरिया
1: लहरियां,
0: और
1: टाई
0: चूड़े,
1: एंड डाई
0: चूड़ा
1: और
0: है ना
1: बांधनी।
0: राजस्थानी चूड़ा, दुपट्टा छोड़ो, लाख की चूड़ी वहां की मशहूर है।
1: जी, हम साड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं ना,
0: हाँ, साड़ी
1: तो
0: भी है
1: वहां
0: वहां
1: के
0: पे
1: चूड़े के
0: चूड़ा।
1: बारे में आप बता दीजिए।
0: हाँ, चूड़ा है वहां के, लाख का बहुत फेमस है
1: जी,
0: वहां पे। जो फॉरनर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ना, जो वो स्पेशल इस चीज को लेके जाते हैं, जो हवा महल है जयपुर के अंदर, उसी उसके जब वो देखते हैं ना, वहां पे दुकानें लगी हुई हैं आगे,
1: हाँ,
0: कई किस्म का हाथ, वो हाथ की कलाकारी है वो ज्यादा तो।
1: जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
0: और जो लहरिया आप बता रहे हो, वो चुनरी रंगते हैं ना, जो कई कई रंगों में रंगते हैं वो, होते तो वो कच्चे रंग ही हैं, पर वर्ल्ड के अंदर मशहूर है वो।
1: हाँ, ये तो कुछ एक प्रोडक्ट की हमने बात की है, वो तो ढेर सारे प्रोडक्ट हैं हर राज्य के।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: राज्य पर मैं तो
1: और
0: इसी
1: आपने, अच्छा
0: अकॉर्डिंग
1: ये
0: आपसे
1: बताइए
0: बात
1: संजय
0: करी है
1: जी,
0: जी।
1: आपने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कभी कोई हैंडलूम से बना हुआ उत्पाद खरीदा?
0: खरीदा तो है, जब हम राजस्थान जाते हैं ना, मैं राजस्थान का ही हूँ, तभी ये बात आपसे
1: अच्छा,
0: करिए।
1: कहाँ से? राजस्थान से?
0: हमारा जिला सीकर है, पर हमारा बोन पंजाब का ही है, 70-75 के इधर ही है पंजाब में,
1: 47
0: के बाद इधर ही मम्मी पापा इधर ही आ गए थे ना पाकिस्तान से, फिर
1: अच्छा,
0: इधर सेटल हो गए हम तो। हमारे तो जो जमीन भी है ना, लोगों ने ढाब ली, वो तो देखी भी नहीं हमने, तो जमीन भी नहीं देखी हुई। ये हमारा गांव, बस इतना पता, ये गांव, इस गांव के रहने वाले हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही
0: पर
1: है।
0: अब रिश्तेदारी में जाते हैं ना, जब बताते हैं तुम आते क्यों नहीं इधर, जब कारोबारी हमारा पंजाब में सेटलमेंट हो गया,
1: जी
0: सब
1: बिल्कुल
0: बच्चों
1: सही
0: की
1: है।
0: शादी
1: और
0: भी, बहनों की, सबकी
1: हाँ
0: शादी इधर ही हो गया पंजाब में।
1: हाँ संजय जी, आपने आज के इस प्रोग्राम में और इजाफा किया है जानकारी में। यही तो हम चाहते हैं कि कुछ हम कहें, कुछ आप कहें, और जितनी भी जानकारी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकती है हम करें। आपका बहुत बहुत
0: जी,
1: धन्यवाद।
0: थैंक यू जी।
1: और दोस्तों, बात कर रहे थे हम साड़ियों की, जो हैंडलूम की साड़ियां हैं, और इनकी बहुत क्रेज़ होती है, हर परिवार में होती है। मेघालय और सिक्किम, मेघालय की हैंडलूम साड़ियों में एरी सिल्क साड़ियां, और सिक्किम में लेपचा, नागालैंड की ड्रैप और टाइट बुनाई वाली साड़ियां होती हैं। असम में यहाँ की गोल्डन मुगा साड़ी, हैंड वोवेन से तैयार इन साड़ियों को धोने के बाद चमक और इनकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उपड़ा जामदानी हैंडलूम साड़ियां, और कर्नाटक की इलकल साड़ियां फेमस है। तेलंगाना की सॉफ्ट सिल्क और कॉटन ब्लेंड के साथ तेलंगाना की हैंडलूम पोचमपल्ली साड़ी काफ़ी पसंद की जाती है, और केरल की सफ़ेद साड़ी पर गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ियाँ, जिसे कसावू कहा जाता है, काफ़ी फेमस हैं। तमिलनाडु की के कांचीपुरम से आने वाली साड़ियों को कांजीवरम साड़ी कहा जाता है, और काफ़ी कीमती और बेहद खूबसूरत होती हैं। हैंडलूम कांजीवरम काफ़ी भारी होता है, तो देखिए कितनी मेहनत और कितना जो है वो काम होता है। तो इसे सलाम हमें करना चाहिए, और जब मौका मिले तो हमें खरीदना चाहिए। और आज से बढ़िया मौका, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज के दिन एक छोटा सा चाहे उत्पाद जो है वो खरीदें, और हमारा जो हथकरघा उद्योग है इसे सलाम करें। और आज का दिन हमें ये भी कहता है कि आइए चलें अपने गांव की तरफ, अपने जड़ों की तरफ।

0: तो साथियों, ये तो था आज का लाइफ ऑन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़। आज हमने नेशनल हैंडलूम डे पर आपसे बातचीत की। हथकरघा उत्पादों को अपनाएं, देश की सांस्कृतिक विविधता घर घर पहुंचाएं। इस प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी कालिया। अब अपने साथी अनिल पुंज को दीजिए अनुमति। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखते जाइए। नमस्कार।
1: हेलो
2: हेलो,
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।
3: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: दोस्तों, आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है बच्चों का शारीरिक शोषण, मतलब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। दोस्तों, स्टैटिस्टिक के अनुसार 50% बच्चे इस हादसे के शिकार हैं और ये समस्या बहुत ही ज्यादा फैली हुई है और ज्यादातर इस समस्या को दबाई जाती है और इसके बारे में बात नहीं की जाती। लेकिन आज मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ ताकि आप अपने बच्चे को सुरक्षित रख सकें और अगर आपके बच्चे इसके शिकार हैं या विक्टिम हैं तो आप उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं कि आपके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें।

तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, शारीरिक शोषण होता क्या है। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का सबसे कॉमन वे या सबसे साधारण तरीका ये है कि कोई भी आपके बच्चे को गलत जगह छुए, और ये किसी को भी हक नहीं कोई आपके बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पे छुए। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि अगर कोई उनके होंठों पे, उनके छाती पे, टांगों के बीच में या पीछे उनको छुए, तो वो आपको बेझिझक बताए कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। दोस्तों, वो अलग बात है कि कोई माँ अपने बच्चे को नहला रही है या उनके कपड़े बदल रही है, लेकिन इसके अलावा कोई अलग कारण नहीं कि आपके बच्चे को कोई इन जगहों पे छुए। दोस्तों, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज तब भी हो सकता है अगर कोई आपके बच्चे को कहे कि आपका बच्चा उनके सामने अपने कपड़े उतारे, या वो आपके बच्चों के कपड़े उतारे, या वो खुद अपने कपड़े उतारे और आपके बच्चे को कहे कि देखें, या वो अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके बच्चों को दिखाएं, या किसी तरह की पोर्नोग्राफी या गंदी तस्वीरें आपके बच्चे को दिखाएं। दोस्तों, ये सारी बातें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में, शारीरिक शोषण में सम्मिलित है। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि ये सारी चीजें गलत है, और कोई उनके साथ ऐसा कुछ करता है तो वे सीधे आपको आकर बताएं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है और हम सबको इस बात की जानकारी होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण या चाइल्ड अब्यूज, इसके शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं, कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो, या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाएं, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज या शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है, और वहां से एक घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका

तो दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें और यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगे कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

0: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, FM 107.2 MHz पर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
0: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
1: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
0: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
1: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
0: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
1: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम म्यूजिक #। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला। म्यूजिक # इंस्टाफेस कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म के गीत से। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की। इस गीत को सुनना चाहा है कृष्णा पार्क, दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और CT दीवाना, कस्बा बराड़ा ज़िला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका छोटी गुड़िया, नूर, नमन, गुरकीरत, सिमरत, गुरुशब्द सिंह राहुल और विजेंद्र कुमार जयजान।

दिल तोड़ तोड़ तोड़ मजा लूटा न करो, तो जाने जाना ये तो है रुसवाई प्यार की, इन बातों से बढ़ जाएगी महंगाई प्यार की, ढूंढे नहीं पाओगी तुम बाजार में आशिक, दौड़ेंगे 50-60 की रफ्तार में आशिक, फिर नाम लेके प्यार का तुम गाया करोगी, सर फोड़ के दीवारों से चिल्लाया करोगी।

चाहती है कर ले प्यार भी थोड़ा, तेरे बिना जीना मेरा जीना है क्या जीना, तड़पूंगा मैं जब आएगा सावन का महीना। वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने। मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा रंग लाएगी के नाज़नी ज़ालिम हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हसीना।

इस्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई तहसील सिल्लोड से, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़ के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़ के, वैष्णवी घोड़ के, गायत्री घोड़ के, यज्ञेश घोड़ के, गायत्री घोड़ के और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी और नवेद हसन अब्बासी, आप सबकी फरमाइश पर आइए सुने प्रेम ग्रंथ फिल्म में विनोद राठौर और अलका याग्निक को।

0: SBI MSME. डिजिटल लोन पाना एकदम आसान. आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत. डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ. क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi. नियम एवं शर्तें लागू.
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस. इस कार्यक्रम का अगला गीत आन मिलो सजना फिल्म से है. आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की. इस गीत को सुनना चाहा है डाबकी रोड अंकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर, मुंडी खरड़ से विजय तंवर और ममता तंवर.

मेरा गांव मेरा देश। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। इस गीत को सुनना चाहा है जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभ प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत और मोहम्मद रिहान, यहीं से समरीन परवीन और माहिरा नूर। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को।

ढिंगरा पंचकुला सेक्टर 11 से अतुल शर्मा और इनके साथी, गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूफ खान, साबरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत जैसे को तैसा फिल्म से है। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इस गीत को सुनना चाहा है सेक्टर 9 पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान और राधे भाविक।

आइए अब सुनते हैं लोफर फिल्म में मोहम्मद रफी को। इस गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया।

पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, निजामुद्दीन और कैसरुद्दीन, और इसी गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, एम्स्टरडेम नीदरलैंड से सुनील कुमार वोहरा, और आप हैं शेवगांव से श्रीराम घोंधली, उषा, कोपरगांव से सुरेश और वर्षा, कोटवा नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से आप हैं सूरज चौहान, और सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं शेषनाग फिल्म में अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर को।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं याराना फिल्म का गीत। आवाज है किशोर कुमार की। इस गीत को सुनना चाहा है पिंगा वाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल साहनी। और आप हैं खंडवा से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। सेक्टर 12 पंचकुला से मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद रफीद, मोहम्मद नासिर और मोहम्मद रिजवान। सेक्टर 21 पंचकुला से मोहम्मद अनस, मोहम्मद अरहान। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमन्नत कौर मनु। और सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और ईशानी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं याराना फिल्म का ये गीत।

0: याराना फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये व्यवहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: लगातार हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट निरसन विधेयक 2026 भी पेश करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी सदन में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग खुली पहुंच के लिए नियम और शर्तें द्वितीय संशोधन विनियमन 2026 और दिल्ली शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का आदेश 2026 की प्रतियां पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 PhD शोधार्थी

0: विद्यार्थियों सहित 3,000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। गृहमंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बाला प्रीतम के नाम से विख्यात श्री हरकिशन साहिब ने ज्ञान, करुणा और सेवा भाव के माध्यम से समाज को सद्भाव का मार्ग दिखाया। श्री शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं, मैं पूजा नरानिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश की याद का दिन। हिंदी सिनेमा के प्रतिष्ठित निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश का नाम उन फिल्मकारों में लिया जाता है जिन्होंने पारिवारिक मूल्यों, भावनाओं और संगीत से भरपूर फिल्मों को नई ऊंचाइयां दी। आज उन्हीं की याद में हमने यादों की महफिल कार्यक्रम में उन्हीं की फिल्मों के गीत शामिल किए हैं और आपको ये पहला गीत सुनवाने जा रहे हैं, आपकी कसम फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अपनापन फिल्म से। सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं,
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जी ओम प्रकाश को। आइए उन्हीं की फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, आक्रमण। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत आनंद बख्शी की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने। फिल्म का नाम अपना बना लो।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूँ बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
4: चलते रे, इश्क भी बढ़ जाते
3: पूरे दबंग अंदाज में
5: दबंग, दबंग, दबंग, दबंग।
3: और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
6: ओके टिको, ओके टिको, बर्फ बदन है।
3: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
7: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
3: जी,
7: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
3: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
8: मैं निकला गड्डी लेके
3: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर। शोक अदाओं के

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

0: आ रहे हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सोनिए सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर

0: 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़। FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुरीला सफर। 2 बजे सुनिए वंदे मातरम, एक जय घोष। 2:30 पर कार्यक्रम सखी सहेली का प्रसारण समय रहेगा 3 बजे। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। आज आप सुनेंगे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रसारित किया जाएगा शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

कार्यक्रम अमृत बाणी होगा शाम 6:30 पर। जयमाला, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर।

हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे नाटिका सुनिए हृदय परिवर्तन। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15 बजे, रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम फिल्मकार जे ओम प्रकाश पर केंद्रित रहेगा।

0: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चावल मिल मालिकों को 30 जून 2025 तक का बोनस देने की घोषणा करते हुए उनकी अन्य सभी समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का भरोसा दिलाया है। इस पर चावल मिल मालिक संघ ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने चावल मिल मालिक संघ के साथ कल चंडीगढ़ में हुई बैठक में कस्टम मिल्ड राइस डिलीवरी व भंडारण सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सरकार द्वारा अब और अधिक चावल की डिलीवरी लेने से मना करने की समस्या पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए 55 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद का लक्ष्य रखा था, लेकिन उत्पादन बढ़ने से ऐसा हुआ है। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख दिया है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की सूची घोषित कर दी गई है। हालांकि बायोमेट्रिक मिलान होना अभी बाकी है। परीक्षार्थी ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड वेबसाइट पर इस सूची को देख सकते हैं। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि अभी अगले 3 दिन बायोमेट्रिक मिलान का काम होगा, उसके बाद अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। RTGS और NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही सेवा शुल्क लगता है। UPI लेन देन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि 11 जून से मॉनसून की सक्रियता फिर बढ़ेगी।
3: अभी मानसून ट्रफ है, वो हरियाणा के पास से गुजर रहा है, जैसे श्री गंगानगर, रोहतक, सहारनपुर, सुल्तानपुर, गया, बांकुरा और मिजोरम तक, और बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी आ रही है, जिसके कारण मानसून की सक्रियता दोबारा देखने को मिली है। तो 1 जून से आज तक हरियाणा में 171.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि होनी चाहिए थी 233 मिलीमीटर, वो 26% कम है। और अभी हरियाणा में 2 दिन ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, परंतु 9 और 10 को थोड़ा कम रहेगा, और 11 के बाद में फिर मानसून की सक्रियता दोबारा बढ़ने की संभावना बन रही है।
1: अंबाला में मेरा युवा भारत अभियान के तहत नगराधीश अभिषेक गर्ग की अध्यक्ष

अध्यक्षता में जिला सलाहकार और समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें सभी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों को 15 से 29 वर्ष के युवाओं को माई भारत पोर्टल पर तेजी से पंजीकृत करने के निर्देश दिए। श्री अभिषेक गर्ग ने मीडिया को बताया कि इस पोर्टल के जरिए युवाओं को राष्ट्र निर्माण, जन जागरूकता कार्यक्रमों और नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान से जोड़कर उनकी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। उपनिदेशक ओंकार स्वामी ने कहा कि युवा केवल 2 मिनट की आसान प्रक्रिया से इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस पोर्टल से जुड़ने वाले युवाओं को सामाजिक,

युवा का सकारात्मक उपयोग किया जाएगा। उपनिदेशक ओंकार स्वामी ने कहा कि युवा केवल 2 मिनट की आसान प्रक्रिया से इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस पोर्टल से जुड़ने वाले युवाओं को सामाजिक, शैक्षणिक, खेल व राष्ट्र निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं गुरविंदर सिंह सहोता तो प्रादेशिक खबरां सुनो। अज देश भर विच कौमी हथखड्डी दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश वासियों नूं भारत की अमीर हथखड्डी विरासत नाल जुड़न अते स्थानिक बुनकरां वल्लों तैयार किए उत्पादों नूं उत्साहित करने की अपील की है। 7 अगस्त 1905 नूं शुरू हुए स्वदेशी अंदोलन की याद में हर साल अज के दिन कौमी हथखड्डी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने लोगों खास करके नौजवानों हथखड्डी उत्पादों को तरजीह देन अते भारतीय बुनकरां की मेहनत को उत्साहित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री की इस अपील का मालवा खेत्र के बुनकरां ने भी स्वागत किया है। भारत की रवायती हथखड्डी कला अते इस नाल जुड़े बुनकरां नूं समर्पित कौमी हथखड्डी दिवस मौके देश भर में वख-वख समागम करवाए जा रहे हैं। श्री मुक्तसर साहिब विखे बुनकरां दे सम्मान लई एक समागम करवाया गया। इस दौरान बुनकरां दी मेहनत ते उन्हां दे रवायती हुनर नूं सम्मानित कीता गया। पंजाब दे मुख चोण अफसर अनिंदता मित्रा ने कहा है कि सूबे विच 13 अगस्त नूं खरड़ा वोटर सूचियां दी प्रकाशना तों बाद दावे अते इतराजां देण दी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ विखे चोण अमले दे ट्रेनिंग प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं उन्हां घरों घरी गणना प्रक्रिया दौरान बूथ लैवल अफसरां वल्लों निभाई गई भूमिका की प्रशंसा करदिआं कहा कि इन्हां फ्रंटलाइन वर्करां की समर्पण भावना वाले कार्यकारण ही समा रहिंदिआं पंजाब विच 100% डिजिटाइजेशन मुकम्मल हो सकिआ है। उन्हां अधिकारियों नूं हदायत की कि सूबे दे नागरिकां नूं सुविधाजनक माहौल मुहैया करवाना साडा सारिआं दा मुढ़ला फर्ज है तां जो नागरिकां नूं किसे भी किस्म दी दिक्कत पेश ना आवे। पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड ने नगर निगम पटियाला के सहयोग नाल अपनी मुहिम मिशन क्लीन पटियाला तहत नाभा सड़क समेत वख-वख थावां ते सफाई मुहिम चलाई। इस दौरान लगभग 1700 किलो कूड़ा इकट्ठा किया गया। इस मुहिम विच स्कूलों ते कालजां दे विद्यार्थियों ने उत्साह नाल भाग लिया। पटियाला नूं साफ सुथरा रखने लई समर्पित स्वयं सेवी नागरिक संस्था मेरा पटियाला मैं ही सवारां दे मैंबरां ने भी सफाई मुहिम विच हिस्सा लिया। मुहिम की शुरुआत करते हुए पंजाब प्रदूषण रोकथाम बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने सारिया समाजिक संस्थावां ते गैर सरकारी संगठनां नूं इस मुहिम नाल जुड़न की अपील की है। पंजाब दे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि सूबा सरकार ने वड्डे पद्धर ते नहरां दी पुनर्सुरजीति जल मार्गां दी बहाली अते धरती हेठले पाणी नूं रीचार्ज करन लई वख-वख पहलकदमियां कीतियां ने। उन्हां कहा कि सूबे दे अनेक ब्लाकां विच धरती हेठले पाणी दा पद्धर 3 तों 5 मीटर तक उपर आ गया है। इस दे नाल ही कणक अते झोने दे नाड़ विच 1 तों 2 क्विंटल प्रति एकड़ वाधा होया है, जिस नाल किसानां दी आमदन विच सिधे तौर ते इजाफा होण दे नाल नाल बिजली दी खपत घटी है ते कुदरती ऊर्जा दी बचत होई है। उन्हां कहा कि सूबा सरकार ने कई थावां ते जमीन हेठले पाणी नूं रीचार्ज करन दीआं योजनावां नूं प्रशासकी प्रवानगी भी दित्ती है। कुल 510 स्कीमां लागू कीतियां गईआं ने, जिन्हां विच 192 छप्पड़ आधारित रीचार्ज स्कीमां ते 246 नहर आधारित रीचार्ज स्कीमां शामिल ने। पंजाब दे जल स्रोत मंत्री वरिंदर कुमार गोयल ने भाखड़ा डैम की ढांचागत सुरक्षा संबंधी फैलाइया जा रही अफवाहों अते क्या सराइयां नूं सिरे तों खारिज कीता है। उन्हां स्पष्ट कीता है कि भाखड़ा डैम पूरी तरह सुरक्षित है ते पंजाब दे लोकां नूं घबराउण की कोई लोड़ नहीं। भाखड़ा डैम के झुक जाण संबंधी कुछ मीडिया रिपोर्टां का हवाला दिंदिआं श्री गोयल ने दस्सिया कि अजिहीआं गलत ते भरमाउण वालीआं रिपोर्टां कारण पंजाब दे लोकां विच बेलोड़ी दहशत फैल गई है। जल स्रोत मंत्री ने दस्सिया कि डैम नूं इस तरह डिजाइन किया गया है कि पानी का दबाव वधन अते इस विच मामूली जिहा झुकाव आउंदा है ते दबाव घटन ते इह फिर अपनी असल स्थिति विच आ जांदा है। गार संबंधी कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि जमा हुई गार डैम की कंध तो लगभग 12 किलोमीटर उपरले हिस्से विच मौजूद है अते इस दा डैम की ढांचागत सुरक्षा नाल कोई संबंध नहीं। पंजाब दे खुराक सिविल सप्लाई ते खपतकार मामलों बारे लाल चंद कटारू ने दस्सिया है लालचंद कटारू चक ने दस्सिया है कि राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट तहत यह यकीनी बनाया जा रहा है कि कोई भी परिवार राशन की प्राप्ति तो वांझा ना रहे। 8वें पातशाह बाल रूप में मनुखता सेवा ते दया का संदेश देने वाले गुरु हरकृष्ण साहिब जी के पावन प्रकाश गुरपुरब मौके अमृतसर स्थित सचखंड श्री हरिमंदर

0: ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡਾ xhandle@aarnu ਜਲੰਧਰ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ 1:40 'ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन। अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं हाथ की सफाई फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने। संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सौदागर फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: इन तमाम फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: हिमाचल की खूबसूरत वादियों का आनंद अब और भी खास।
2: HPTDC के प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर मेंबरशिप कार्ड्स के साथ पाइए
0: HPTDC के 50 से अधिक होटलों में 50% की छूट,
2: भोजन पर 20% और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर 10% की छूट।
0: तो आज ही अपना मेंबरशिप कार्ड चुनें।
2: ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें hptdc.hp.gov.in
0: या हिमाचल भवन चंडीगढ़ में संपर्क करें। आइए अब सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
3: होती रहती है बातें प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी सुरीली, सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात। लेते हैं अब अगला गीत भोला भाला। इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत। सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकोड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। ओह, एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना ज़रूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था, बिल्कुल आता रहा होगा।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को। दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना। लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है। थोड़ा बच के ही भीगना होगा है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम और मैं हूँ कश्मीर में, क्या बात है। वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूँ, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूँ। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात।

इको श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में गजरी गा रहे थे, कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के 3 लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत। समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजदूर सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

0: हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बन जाती है। वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफ़र का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन 50 लाख रुपए तक का तुरंत। डिजिटल अप्रूवल 10 साल तक की अवधि आकर्षक ब्याज दरों के साथ क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
0: घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती।

एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन की झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज़ में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत, शानदार है, बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए, आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी, यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मज़ेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद, विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में, फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है, बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है, पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है, ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है, लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत, आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है, भूपेन हजारिका का संगीत बद्ध किया।

पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतुचक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं, और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के, दिल की बात घर से दूर, प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज़, हर गीत मोती की माला, सभी सॉन्ग कुछ यादें ताज़ा हो गई हैं उनकी, ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत सावन की रूमानी फुहारों झूलों की मस्ती किसी अपने की याद आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं और उन्होंने ये गीत लिखा है। अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्धमोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदन लाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरु तुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को पेंटन विले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने

0: भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदन लाल धींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। इन शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदन लाल धींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: ३३ दिसंबर १९१२ को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बरकले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।

केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को

बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम टू के साथ जो जो

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधि

0: मंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: में कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर

0: आ रहे हैं महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते रहे पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
2: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
3: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
3: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
4: निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
5: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, आजी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुद्र पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: 4 औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं,
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है। लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत है आया सावन झूम के। इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग, उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार, हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन, जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान, सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले, संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम, जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है, बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुन्ना बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: बेलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं, वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गाँव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा
0: जी। दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है।
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम, हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
0: हाँ जी,
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे।
0: अच्छा,
1: और बहुत मजा आता था
0: जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा दिया जी, आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम ही देखिए मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी। मैं
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम
0: कहाँ से?
1: झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज़ भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में। जी, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे जी, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: सावन लगी कैसी है अगन, ला ला ला ला ला ला ला लगी मैडम जी।
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए
1: जी
0: कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती,
0: अच्छा
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी,
1: वो चलाती।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में
1: बेटा,
0: और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है, हम, बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती,
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जिस हम छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रही हैं और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां,
1: हाँ,
0: है ना, बालों में गजरा।
1: मोगरा।
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना? क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी।
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके है कौन में से हम आपके है कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हम

0: कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ, भोपाल से सहेली।
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए कि
1: हाँ
0: बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते।
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हों तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियाँ, लाल हरी चूड़ियाँ दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्यों हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात है, मतलब
1: तो
0: 1970s
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था,
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां? और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है
1: हाँ
0: आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले पेंगे, मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात
1: ही मजा है वो।
0: है। और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी मेरी माँ लोग, चाची लोग, उन लोग सब हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज, हरा लाल, मतलब एक
0: क्या
1: अलग ही
0: बात,
1: छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना?
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली, सारी
0: जी
1: बदमाश लड़की लड़कियां, सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
0: जी
1: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद, और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज, और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा, और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्यौहार

0: त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कदरी तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो
1: हाँ
0: भाई बहन
1: हाँ
0: से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया। तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं
0: क्या बात है,
1: और आप सोच नहीं सकते। और मेरी इकलौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब। और हम लोग सब साड़ी पहनते थे और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था।
0: क्या
1: राखियां
0: बात है
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी,
1: के धागों से,
0: हाँ जी,
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां।
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है,
1: प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है,
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों हम लोग सारे जो चिल्लड़ पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है
1: बहुत बहुत
0: जी।
1: मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
1: हाँ
0: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं
0: जी
1: और देवर देवरानी, उन लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
0: जी
1: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है। तो
0: क्या बात
1: बस
0: है,
1: छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
0: नहीं बिल्कुल,
1: और
0: आप याद
1: सावन है
0: कीजिए
1: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है।
0: जी।
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए ये वाला गाना आप चला दीजिए। यस
0: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलका मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी जी,
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, सावन की
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी,
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या
1: मावे की?
0: मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी
1: मावे
0: मिलाती नहीं
1: की
0: है, सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
0: जी,
1: हाँ,
0: बहुत,
1: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से
0: जी
1: ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और
0: जी
1: खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो वो
0: क्या
1: फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है।
1: और
0: यानी
1: फिर
0: देखिए,
1: बड़े हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: देखिए माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में
1: जी
0: सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि
1: हाँ
0: शादी होगी, दूसरे घर जाएंगी, तो वहाँ पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि
0: जी
1: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल
1: दो
0: सही बात
1: लेडीज
0: है।
1: भी हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है, यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
0: जी
1: लगती है ना, कि
0: जी
1: मैं क्या बोलूँ, ये
0: जी
1: पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं
0: जी
1: मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी।
0: जी
1: 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें
1: बिल्कुल,
0: होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है, तो हो नहीं पाता है।
0: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज़। तो सावन में जब

0: ले लगते हैं। वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
1: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है। उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
0: और वहां
1: उस
0: पर
1: समय और कुछ नहीं रहता
0: जी
1: था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है। वो जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
0: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती हैं वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियाँ सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीज़ें ज़्यादा ख़रीदा करती थी उस समय?
1: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
0: क्या
1: था।
0: बात है, हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
1: किचन में
0: तो
1: हाँ,
0: जी
1: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़ कर। वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
0: जी
1: आते थे, अब
0: जी
1: ये छोटे छोटे मिलने लगे, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना, तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
0: क्या बात है, यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
0: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन

0: कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है। मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी क्या बात है। पूनम जी, ये बताइए,
1: सावन
0: जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहां पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहां की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरी बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाली बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है। हाँ
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: हाँ बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं, वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है,
0: जी
1: और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अबके सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फ़ोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक AISSMS पुणे।
1: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले

0: पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ नैक ए प्लस और NBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे समर्थी स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है। चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं, अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चले जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनव की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी

लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता

है उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, ना अपने परिवार में ना ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो, मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं। निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं, मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती, स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे यह एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेल जोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों? अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया।

0: जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: प्रोग्राम पिटारा के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।

0: आप सुन रहे हैं गीतों भरी कहानी। इस श्रृंखला में आज विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो। हमें मिलना फौरन बंद करना होगा, प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए

0: तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानी से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने

जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई। हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है। स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया। सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने यह जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत। राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं। इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं। राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उनको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब। राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और

आज केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा, कोई कह सकता है कि ये इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। इस समय आप हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए,
2: तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर,

0: हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक। तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

अब से कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने ये विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही

0: सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से आज अपने निवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण हो। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। लोकसभा में लिखित उत्तर देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने अनुकूल, नवीन और टिकाऊ शिक्षा प्रणालियों के निर्माण के लिए ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया है। उन्होंने आज भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को आर्थिक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन और तीव्र तकनीकी प्रगति जैसी वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में सक्षम होना चाहिए। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने भेजी गई द्वेषपूर्ण फाइलों के माध्यम से पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की कार्यप्रणाली वाली घटनाएं सामने आई हैं। केरलम के 4 उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिले दोपहर तक ऑरेंज अलर्ट पर थे, अब उन्हें रेड अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी है, वहीं शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई स्थानों पर आज तेज वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में आज मध्यम से तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 65 अंक गिरकर 24,571 पर बंद हुआ। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में हाजिर होंगे लेकर फिल्म संगीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आराधना फिल्म का ये गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल और संगीत है एस डी बर्मन का।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में। बोल हैं आनंद बख्शी के और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अनुरोध।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लंबे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। आंखों के हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो सकता है, इसके लिए हेल्दी डाइट का सेवन करना चाहिए। हेल्दी डाइट में आप हरी सब्जियां, पालक, फल और ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। आजकल फोन के ज्यादा इस्तेमाल और लैपटॉप कंप्यूटर पर ज्यादा काम करने की वजह से आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इससे नजरों को कमजोर होने की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में कई बार धुंधला दिखने की दिक्कत भी हो जाती है, जिससे राहत पाने के लिए लोग चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन चश्मा लगाना कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, इसके लिए सही इलाज की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ घरेलू उपायों के जरिए भी आप आंखों को कमजोर होने और धुंधला दिखने की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन घरेलू उपायों के बारे में आपके आरजे चेतन से इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। नंगे पांव घास पर टहलना। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि हरी घास पर चलना आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल सुबह सुबह के समय हरी घास पर ओस की बूंद होती है। ऐसे में यदि ओस से भीगा घास पर चला जाए तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ने में फायदा मिलता है। संतुलित आहार, दैट इज बैलेंस्ड डाइट।

आंखों को हेल्थी रखने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। गाजर, कैरेट। आंखों के लिए गाजर का सेवन भी बहुत फायदेमंद होती है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन जैसी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। गाजर को सब्जी या सैलेड के रूप में खाया जा सकता है। आंवला में विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो आंखों के साथ साथ बालों के लिए भी लाभकारी होते हैं। इसके लिए आप आंवले के मुरब्बा, आंवले का अचार, आंवले का पाउडर और जूस का सेवन कर सकते हैं। मुलेती। इम्यूनिटी बढ़ाने में नहीं, कई समस्याओं को दूर करने में कारगर मुलेठी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काली मिर्च और भूरी मिर्च भी बहुत फायदेमंद होती है। हालांकि इनका सेवन करना आसान नहीं होता, इसके लिए आप मिर्ची का पाउडर बनाकर शहद और घी के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं। आपकी आंखें आपके चेहरे की सबसे आकर्षक विशेषता है। वे केवल एक दृश्य अंग जो आपको दुनिया को देखने में मदद करता है से अधिक है। वे मुस्कुराती है, हंसती है, रोती है। जब शब्द विफल होते हैं तो हमारी आंखें हमारे भावनाओं और विचारों को खूबसूरती से व्यक्त करती है। इसीलिए अपनी दृष्टि की रक्षा करना आपकी ज़िंदगी की गुणवत्ता को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग अपनी आँखों के बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना वे अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा हमारी ज़ोरदार जीवन शैली, विषाक्त वातावरण और अनुचित आहार से चीज़ें बदतर होती हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से झुर्रियाँ, अंधेरे घेरे, चेहरे की सूजन आदि आजकल आम समस्या है। इसके अलावा उम्र के साथ दृष्टि हानि का जोखिम भी बढ़ता है। आपकी त्वचा और चेहरे की तरह आपकी आंखों की देखभाल करना ये सुनिश्चित करेगा कि आप हमेशा सर्वश्रेष्ठ दिखे और महसूस करें। ये उम्र से संबंधी बीमारियों जैसे कि चक्केदार अधापतन, मोतियाबिंद, मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी, मोतियाबिंद आदि से रक्षा में मदद करेगा। आपकी दृष्टि की रक्षा करने का और अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए आप इन सरल चरणों का पालन करें जो मैं आपको बोलने वाला हूँ इस लम्हे प्रोग्राम में। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। उपयुक्त आहार। एक अच्छी नेत्र देखभाल सही आहार से शुरू होती है। विटामिन सी और ई, जस्ता, लूटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध आहार आपकी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है और आयु से संबंधी आंखों की समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। अपने नियमित आहार में गाजर, चुकंदर, संतरे और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे खाद्य पदार्थ को शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में समृद्ध भोजन जैसे कि सैमन और ट्यूना खतरनाक धब्बेदार अधापतन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मोतियाबिंद के जोखिम को कम करते हैं। धूप का चश्मा रेटिना क्षति को रोकता है। वे झुर्रियों और त्वचा के कैंसर को रोकने के लिए पलक के नाजुक त्वचा की रक्षा भी करते हैं। वे आँख से संबंधित समस्याएं जैसे मोतियाबिंद, पिंगिक्यूला और चक्केदार अधापतन के जोखिम को कम करते हैं। धूम्रपान छोड़े। तंबाकू, धूम्रपान सीधे नेत्र समस्याएं सहित कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों से जुड़ा हुआ है। धूम्रपान करने वाले मोतियाबिंद और धब्बेदार अधापतन के विकास का उच्च जोखिम भी होता है। इससे ऑप्टिक तंत्रिका क्षति हो सकती है जिससे अंधापन भी हो सकता है। आपकी आंखों को भी आपके जैसे आराम की जरूरत है। कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर बहुत लंबे समय तक घूरने जैसे जोरदार गतिविधि से बचे या कम करें। यह आपके आंखों को तनाव पैदा कर सकते हैं और धुंधली दृष्टि, शुष्क आंखें, सरदर्द आदि जैसे समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू उपचार जैसे आंखों पर ककड़ी के स्लाइसेस रखना, विश्राम लेना, गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नियमित आंखों की जांच करवाएं।
ये

0: सुनिश्चित करने के अलावा कि चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के लिए आपका दावा का पचा अध्यातन है। नेत्र स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए नियमित रूप से आँखों की जाँच आवश्यक करवाएं। मोतियाबिंद और MMD जैसी गंभीर नेत्र परिस्थितियों में से अधिकांश का इलाज आसानी से और सफलतापूर्वक किया जा सकता है अगर निदान और इलाज जल्दी से किया जाता है। यदि बिना इलाज छोड़ा जाता है तो इन रोगों से गंभीर दृष्टि हानि और अंधापन हो सकता है। इसके अलावा आँख की पुतली को फैलना सहित एक व्यापक आँखों की परीक्षा, आँखों के रोग जो अक्सर कोई चेतावनी नहीं देते हैं जैसे ग्लॉकोमा और उम्र से संबंधित धब्बेदार अधापतन का पता लगाने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यह थी आई केयर टिप्स फॉर यू। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने RJ चेतन को इजाजत दीजिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का

0: अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि,

0: राधिका, जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
1: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
1: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
1: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
1: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है, है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए। आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
1: नाना जी, पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
3: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
1: अच्छा,
3: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
1: मामा जी, मामा जी।
4: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
4: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो। बता सकती हो कि ये क्या है?
1: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
4: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
4: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
4: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा,
4: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
4: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
4: हाँ बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
4: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा,
4: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा,
4: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं।

0: और शिलालेख को।
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर, श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख? अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।

श्रोताओ, अब से कुछ ही पलों में शाम के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम

0: उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीत पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आओ हुण सुणदे आं जगजीत सिंह ते चित्रा सिंह दीआं आवाज़ां विच साथ साथ फिल्म दा गीत, कुलदीप सिंह दा संगीत ते बोल जावेद अख्तर दे।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का सशक्त माध्यम है। राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में पौधारोपण कर 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। हरियाणा में पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार द्वारा अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और डाक विभाग के अंबाला परिमंडल ने स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग सेवाओं का समय बढ़ाकर सुबह 9 से रात 8 तक किया। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र ने देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के साथ साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला, संस्कृति और प्रकृति के प्रति प्रेम को भी बढ़ावा दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं

0: बत्ती हुई महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब हथकरघा के सभी उत्पादों पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान काम कर रहा है।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया। आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं। आईआईटी दिल्ली के साथ आपको जोड़ करके मुझे गर्व है कि आईआईटी दिल्ली अब हैंडलूम के सारे चीजों पे काम

0: स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं। आईआईटी दिल्ली के साथ आपको जोड़ करके मुझे गर्व है कि आईआईटी दिल्ली अब हैंडलूम के सारे चीजों पे काम करना शुरू किया है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार बुनकरों को उनके उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मानेसर में पौधारोपण कर 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में मंत्रियों, सांसदों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मानेसर में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानेसर और गुरुग्राम की पहचान हरियाली, स्वच्छ हवा और प्रकृति से भी बनी रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का अवसर है।
2: आज का यह वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। यह संकल्प को संस्कार और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का कार्यक्रम है। जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, कल की सुरक्षा कर रहे होते हैं।
1: उन्होंने कहा कि दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है जबकि भारत में हजारों वर्ष पहले से प्रकृति की पूजा हो रही है। प्रकृति की रक्षा सनातन संस्कृति का मूल संस्कार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सब देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भावपूर्ण मंत्र दिया है।
2: साथियों, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ माँ के नाम लगाने का भावपूर्ण मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है कि माँ हमें जन्म देती है, वृक्ष हमें जीवन देते हैं, माँ की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। तो जब कोई बेटा या बेटी अपनी माँ के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है तब वह पौधा केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस अभियान को जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का काम राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में पंचायत और सार्वजनिक भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने का निर्णय लिया गया है। दुर्लभ तथा संकटग्रस्त वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हरियाली बढ़ाने और पौधों की देखभाल में सक्रिय भूमिका निभा रहे 610 वन मित्रों का उल्लेख करते हुए हर नागरिक से अपने अपने क्षेत्र में स्थानीय जलवायु के अनुकूल पौधे लगाने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार द्वारा अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। आज मानेसर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा वन मंत्री राव नरबीर सिंह की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए कहा कि वर्षों पहले जिस प्रकार गुरुग्राम की अरावली पर्वतमाला को पुनः हरित बनाने और उसके प्राकृतिक स्वरूप को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया था, आज वह धरातल पर साकार होता दिखाई दे रहा है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने आज वन महोत्सव के

0: दूसरे चरण में कैथल के सरस्वती संरक्षण आरक्षित क्षेत्र में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौधारोपण पर लगातार बल दे रहे हैं।
1: जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि भाई जिस तरह से आज पेड़ जंगल कम होते जा रहे हैं, हमें पेड़ लगाने चाहिए और जिस तरह से पेड़ों से हमें औषधि भी मिलती है, फल भी मिलते हैं, छाया भी मिलती है, पेड़ लगाना जितना जरूरी है उसके साथ साथ उसकी देखभाल करना भी जरूरी है।
0: डाक विभाग के अंबाला परिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। अब अंबाला के सामान्य डाकघर में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक स्पीड पोस्ट और पार्सल बुक कराए जा सकेंगे। डाकघर के प्रवर डाकपाल प्रभात गोयल ने बताया कि यह सुविधा जिला स्तर के मुख्य डाकघरों में लागू की गई है।
2: डाक विभाग ने जनता को सेवा पहुंचाने के लिए टाइमिंग का एक्सटेंड किया है। सुबह 9 बजे से 8 बजे के बीच में जब मर्जी चाहे आप स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। हमने 3 काउंटर खोले हुए हैं। लंच टाइम में भी कोई पब्लिक आती है तो पब्लिक का काम चालू रहता है। अभी ये जो फैसिलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है।
0: उन्होंने बताया कि डाकघर में पैकिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित शुल्क देकर वहीं पैकिंग कराई जा सकती है। उन्होंने कहा कि ये सेवा छुट्टी के दिनों में भी उपलब्ध रहती है। हरियाणा के अन्य कई जिलों से भी पौधारोपण के समाचार मिले हैं। 77वें वन महोत्सव के दूसरे चरण के तहत फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी स्थित श्रमिक कल्याण अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण आयोजित किया गया। समारोह में विधायक पंडित मूलचंद शर्मा और विधायक सतीश फागना ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रोहतक के मायना गांव के पास आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता और सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने पौधारोपण किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि समावेशी विकास का सशक्त माध्यम है। राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
3: आजकल भारत के हर पिंड दी छतां बदल गई हैं। जिथे कदे छतां ते सिर्फ पापड़ अते कपड़े सुकाए जांदे सन, उते हुण बिजली बिल जीरो हो रहे हन। हर पिंड विच लोग सोलर पैनल लगा रहे हन। तुसी भी लगा लो, 78,000 दी सबसिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख तो वध परिवार ता इस दा लाभ ले चुके हन। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नाल जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। संसद ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास उद्बल 2026 पास कीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा खेतर समावेशी विकास लई एक शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने साल 2025 लई संत कबीर हथकरघा पुरस्कार ते राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान कीते। पंजाब के NRI मामलों बारे मंत्री डॉ रजोत सिंह ने कहा, कैनेडा विच वर्क परमिट संबंधी दरपेश मुश्किलों का सामना कर रहे पंजाबी विद्यार्थियों के हितों की राखी लिए सूबा सरकार हर संभव यतन कर रही है। 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश गुरपुरब श्रद्धा भाव नाल मनाया जा रहा है ते भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका च ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड बेल्ट का खिताब जीता। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद ने लोकसभा की मंजूरी तो बाद अज सूखम छोटे अते दरमियाने उद्यम विकास सोध बिल 2026 पास कर दिता है। राज्यसभा ने यह बिल सोमवार नूं पास किया सी। पहली बार मुलतवी होने तो बाद जो सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे मुड़ शुरू हुई तो सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम बारे मंत्री जितन राम मांझी ने सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यम विकास एक्ट 2006 विच होर सोध करने लई बिल पेश किया। इस बिल का उद्देश अदायगी विच देरी नूं हल करना ते विवाद के हल नूं सरल बनाउणा है। बिल विच इह व्यवस्था भी की गई है, जेकर कोई मामला 6 महीनों तो वध समय तो बकाया पै तो दित्ती गई रकम का घट्टो घट 50% सप्लायर नूं अदा किया जाना चाहिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हथकरघा खेतर न सिर्फ रोजी रोटी का साधन है सगों समावेशी विकास लिए एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आज नवी दिल्ली च 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह नूं संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि हथकरघा हजारां सालों तो भारत के सभ्याचार ते सभ्यता का एक अनिखड़वां अंग रहा है। उन्होंने कहा, देश के हथकरघा खेतर च 35 लाख तो वध लोक लगे हुए ने जिन्हां विचों करीब 25 लाख औरतां ने। उन्होंने आख्या कि हथकरघा भारत के आजादी संग्राम ते स्वय निर्भरता की भावना नाल डूंघाई नाल जुड़िया होया है।
5: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की

0: हुणे तुसी सर्वन कर रहे सी प्रोग्राम अमृत बाणी दे तहत कुछ शब्द असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: श्रोते, बस कुछ ही पलों के इंतजार बाद तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम जयमाला।

विविध भारती पर कार्यक्रम जय माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

0: युद्धा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बी प्राक और साथियों की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल, तनिष्क बागची का संकेत। आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: द्विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश। वंदे सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
1: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य

0: और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV AIDS फ्री बनाएं। HIV AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में आप सुन रहे थे करीब फिल्म से एक गीत, राहत इंदौरी के बोल, अनु मलिक का संगीत, कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय

0: जयमाला कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

चीनी कम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में, समीर के बोल, इलैयाराजा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, जय माला।

0: मोहरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज़ें, इंदिवर के बोल, वीजू शाह का संगीत। कार्यक्रम जयमाला में अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में रहना है तेरे दिल में। फिल्म से ये गीत, समीर के बोल, हरीश जयराज का संगीत।
1: मुझे कहना

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका हृदय परिवर्तन। ये है ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं रमेश उपाध्याय और निर्देशक मधुप शर्मा।
1: मालिक, मालिक,
2: क्या हुआ हेनरी? इस तरह घबराए भी क्यों हो?
1: गजब हो गया मालिक, केलियों आ रहा है।
2: क्या कहा? केलियों आ रहा है? सत्यानाश, हेनरी, हेडलर, जोजफ, तुम लोग फौरन दुकान बंद करो जल्दी। और चार्ल्स, तुम आसपास के लोगों को बता दो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ।
3: जा,

0: कहाँ हो मेरी बच्ची? हे भगवान,
1: क्या बात है माँ?
0: चलो अंदर चलो जल्दी, जिम्मी को भी अंदर बुला लो।
1: माँ मेरी साइकिल
0: बाहर में जाए, साइकिल तुम चलो जल्दी चलो।

0: छिप गए, चूहे कहीं के। हाँ, सारा बाजार बंद है। पता नहीं इन कमबख्तों को मेरे आने की खबर कैसे मिल जाती है।
1: इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए इधर ही आ रहा है।
2: हाँ ठीक है, देखो तुम तीन आदमी दबे पांव जाकर उसे घेरने की कोशिश करो, बाकी यहीं मेरे साथ रहो। जरा होशियारी से काम लेना, आज बदमाश बचकर निकल न जाए। देखो आवाज जरा भी ना हो, जरा भी लापरवाही की तो मारे जाओगे। जानते हो कैसा अचूक निशाना है उसका?
1: जी, तान, जान, फ्लिप, आओ मेरे साथ।
0: कैसे मनहूस लोग हैं, मेरी गोली से मरने को कोई तैयार नहीं, कुत्ते बिल्ली। ठीक है तो इन कुत्ते बिल्लियों को मारने में क्या मजा आएगा।

0: इधर आओ, उन खाली पेटियों के पीछे छिप जाए, वो इधर ही तो आ रहा है। जैसे ही सामने की मोड़ पर आए भून कर रख दो। वो उधर चला गया।
1: अच्छा तो पुलिस के कुत्ते आकर मेरे पीछे लग ही गए, कोई बात नहीं, इन्हें भी देख लूंगा। लेकिन इन्होंने तो मुझे चाकू से रखा है। कहिए आप कहीं छिप जाओ, नहीं तुम्हारे जाओगे। ठीक है, स्टेशन मास्टर के केबिन में ही छिप जाऊं, यही ठीक है। अभी किसी का निशाना इतना सच्चा नहीं कि मुझे गोली लग सके। ठीक है, खबरदार, अगर किसी ने मेरा हाथ रोकने की कोशिश की तो भूल कर दूंगा।
0: तो देखो वो स्टेशन की तरफ भाग रहा। फायर। ओह बेकार, बच निकला कमबख्त। लगता है स्टेशन मास्टर के केबिन में घुस गया। देखा, जरा सी लापरवाही से सब गड़बड़ हो गया। अब वो किसी खिड़की या दरवाजे की दराज से हमारी सारी हरकतें देख सकता है।
2: नहीं हुजूर, यहां पेटियों के पीछे से वो हमें नहीं देख सकता।
0: तुम बेवकूफ हो, आखिर हम यहां छिपे रहकर क्या कर लेंगे? स्टेशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, गाड़ी आने का समय हो गया है। जैसे ही गाड़ी रुकेगी वो गाड़ी में जा चढ़ेगा, और फिर उसे पकड़ना आसान नहीं। गाड़ी आने से पहले ही उसे पकड़ लेना चाहिए।
2: वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? आड़ लेने के लिए कोई चीज नहीं है, और यूं खुले खजाने गए तो कैलियोप की बंदूक हमें।
0: यही तो परेशानी है। अच्छा एक काम करो, उधर जो ठेला खड़ा है ना उसे आहिस्ता से इधर खींच लो, आवाज जरा भी ना हो।
2: जी अच्छा।
0: और उधर से उनके बोरे भी उठा लो।
2: जी
0: हाँ ठीक है, अब इस ठेले पर ये बोरे रख दो, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ अब दूसरा रखो, ठीक, और तीसरा परली तरफ सीधा खड़ा करके रख दो, यूं।
2: जी अब
0: मैं इन बोरों की आड़ में ठेले को चलाता हुआ स्टेशन मास्टर की केबिन की तरफ जाता हूँ। तुम लोग यही रहो, जब तक सीटी न बजाऊं कोई यहां से नहीं ले। यहां बैठकर केबिन के दरवाजे पर निशाना साधे रखो। अच्छा मैं चलता हूं।
2: इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलता हूं, अकेले जाना आपका ठीक नहीं है।
0: बच्चों जैसी बातें न करो, इस छोटे से ठेले के पीछे अकेला ही मैं मुश्किल से छिप सकता हूं। अच्छा तुम लोग मुस्तैद रहना।
2: जी
1: स्टेशन मास्टर और उसका असिस्टेंट दोनों ही खिड़की से कूद भागे, बुजदिल। चलो अच्छा हुआ, अब ये केबिन अपना किला है, देखता हूं कौन आता है। ये ठेला इधर कैसे लुढ़कता आ रहा है? अच्छा समझा, इस ख्याल में हमारे बहादुर इंस्पेक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये इंस्पेक्टर क्यों करते हैं। खैर कैली इतना बेवकूफ नहीं है कि इन बोरों पर गोलियां चलाकर अपना बारूद खराब करे, वो आपके सामने आने पर ही आपका स्वागत करेगा। तो जनाब अब आप मेरे निशाने की सीध में आ गए, आइए आइए, जान से नहीं मारूंगा, खोपड़ी पर गोली की एक खरोंच आपको चित करने के लिए काफी है, और इसमें कैली माहिर है। और जब तक आप होश में आएंगे बंदा गाड़ी में बैठकर आराम से, तो चलो चलिए छुट्टी हो गई, कम से कम 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहिए। हाँ गाड़ी आ गई, ठीक है अब मुझे चल देना चाहिए, लेकिन हाँ सूरत तो ठीक कर लू, शरीफ हूं किसी। हाँ ये ठीक है, बस इस तरह है। अरे ये तो मेरी माँ इधर आ रही है। ओहो उसने तो मुझे देख भी लिया, वो तो इधर ही आ रही है, अब क्या होगा? मारे गए, इससे मैं हमेशा चिट्ठियों में लिखता रहा हूं कि मैं यहां पुलिस अफसर हूं, और आप वो मेरी हालत देखेगी तो क्या कहेगी? क्या करूं, मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह आकर मिल जाएगी।

0: माँ के आने से पहले इंस्पेक्टर का बिल्ला उतारकर अपनी कमीज पर लगाया। बाकी तो ये भी सादे लिबास में है और मैं भी।
1: क्या हुआ केली? तूने मुझे देख लिया फिर भी तू मेरे पास नहीं आया? ये क्या, ये आदमी बेहोश हो गया है क्या?
0: माँ ये गुंडा है, इसने शहर के लोगों को बहुत तंग कर रखा था। मैंने इसका पीछा किया तो ये इधर भाग आया। चलो अच्छा ही हुआ न मैं इसके पीछे यहाँ आता, न तुझसे मिल पाता।
1: अरे मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है। आ तो जरा देखे इसे, न जाने ऐसा काम क्यों करते हैं लोग।
0: हाँ मैं यही तो मैं भी सोचता हूँ।
1: अरे केली ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हो गया है। जल्दी से रुमाल गीला कर ला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मार।
0: अभी लाया। ये लो, ये लो।
1: बस अभी होश में आया जाता है
0: लगता है।
1: होश में आ रहा है।
2: अरे भैया मेरी बात सुन ले।
1: अरे वाह, गोली ने तो शायद छुआ भी नहीं, बस जरा सी खरोंच लगी और तू बेहोश हो गया। मामूली सी खरोंच है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। क्यों अब कैसा लग रहा है? बस बस बस, जरा ऐसे ही लेटा रहे, मैं तेरा सिर धो देती हूँ।
0: कौन है यार?
1: मैं इंस्पेक्टर केलियोक की माँ हूँ, अलबामा से इसी गाड़ी में आई हूँ। 8 साल से मैंने अपने केली को देखा नहीं था, न केली मुझसे मिलने गया न मैं आ सकी। रेलवे में मेरा भांजा प्राइस एक क्लर्क है, उसने मुझे यहाँ तक का एक पास बनवा दिया। एक हफ्ते यहाँ रहूंगी फिर उसी पास से लौट जाऊंगी। अरे बस भी कर अब, देख मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने तुझे जान से नहीं मारा, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है, इंस्पेक्टर हो गया है। अरे केली तूने इंस्पेक्टर होने की बात तो कभी नहीं लिखी। खैर क्यों भैया, उठकर बैठ जाओ, मेरे तो हाथ भी थक गए तुम्हारा सिर सहलाते।
0: बस बस माँ जी रहने दीजिए, मैं अब ठीक हूँ। केली जरा सहारा देकर मुझे बैठा दो। अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई, इंस्पेक्टर केली अब क्यों नहीं कहते? ओह गलती हो गई।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तू अभी ठीक हो जाएगा, लेकिन अब बदमाशी मत करना, मुझे सब पता चल गया है। जब तू बेहोश था केली ने मुझे सब बता दिया है, और देख मेरे बेटे ने तुझ पर गोली चलाई, इस बात का बुरक मत मानना, ये तो उसका कर्तव्य था। अगर वो ऐसा ना करे तो तेरे जैसे लोग दुनिया के नाक में दम ना कर दें। मेरा कहना मान, तू अब शरीफ आदमी बन जा मेरे केली की तरह।
3: क्यों इंस्पेक्टर केली, मान जी शायद ठीक ही कहती है।
0: हाँ इसमें क्या शक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माँ की हर बात सिर आंखों पर लेता, माँ से फौरन माफी मांग लेता और प्रतिज्ञा करता कि माँ आइंदा ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
1: देखा तूने मेरे बेटे के ख्याल कितने ऊंचे हैं, इसी से कुछ सीख। हाय राम, मैं अपना ट्रंक तो प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ आई, केली को देखकर ऐसी इधर भागी कि ट्रंक का ध्यान ही नहीं रहा, कोई ले ना गया हो। लेकिन जाएगा कहाँ, मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
3: क्यों बच्चू, माँ के सामने इंस्पेक्टर बन गए और मुझे केलियोक जैसा गुंडा बना दिया?
0: मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी माँ मुझे बहुत नेक और लायक बेटा समझती है, वो मेरी बदमाशियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती।
3: तो तुम सचमुच अच्छे और लायक बेटे क्यों नहीं बन जाते?
0: मैं कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अपने को माँ की नजरों में अच्छा बनाए रखने के लिए मैंने कबीला अपनी कमीज पर नहीं दिखा सकूंगा। ठीक है ये लीजिए।
3: चलो ठहरो, बिल्ला अपनी कमीज पर ही लगा रहने दो, और जब तक माँ जी यहाँ रहे उसे लगाए रखना। जब तक वो यहाँ रहेंगी तुम इंस्पेक्टर रहोगी, मैं सब सिपाहियों को समझा दूंगा, कोई तुम्हारा भेद नहीं करेगा, लेकिन माँ के आदेश का पालन।
0: जा वो ठीक है, अगर मैंने उसके आदेश का पालन न किया तो मुझ जैसा नीच कोई नहीं होगा, फिर आप मुझे जो चाहे।
3: माँ जी आ रही है।

हृदय परिवर्तन अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का ये था हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे रमेश उपाध्याय और निर्देशक थे मधुप शर्मा। ये थी आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की,

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हैं हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंद

बॉबी जासूस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल बॉनी चक्रवर्ती की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रा का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं चित्रलोक।

0: जॉली एल एल बी 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें, जुनैद वसी ने इसे लिखा और चिरंतन भट्ट ने संगीत से सजाया।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें, गरिमा सिद्धार्थ के बोल, विक्की प्रसाद का संगीत। कार्यक्रम
1: SBI MSME डिजिटल लोन पाना एकदम आसान। आपको मिलेगा 5 करोड़ रुपए तक का लोन, 50 लाख रुपए तक का तुरंत डिजिटल अप्रूवल, 10 साल तक की अवधि, आकर्षक ब्याज दरों के साथ, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कवर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800 1234 या विजिट करें bank.sbi। नियम एवं शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।